मिडी वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की पांचवी तिथि तदनुसार 27 अगस्त सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779101705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी

0: वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हमारा मन बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकता है जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

0: अभी आप हरिहरन, अनूप जलोटा, अनुपमा देशपांडे और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: मीडियम वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आज का विषय है अमूल्य जीवन निधि।
6: ईश्वर ने हमें मानव जीवन की जो अमूल्य निधि प्रदान की है, बहुधा हम उसे कौड़ियों के मोल गवा देते हैं, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए, सजाना संवारना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में निखारना चाहिए। उसे हम अज्ञानवश अनजाने ही नष्ट कर देते हैं। जीवन संध्या में जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तब पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसी नादानी क्यों की, लेकिन तब तक अवसर हाथ से निकल चुका होता है। एक लकड़हारा था, घने जंगल में वह दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें हाट में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। जिस राज्य में वह रहता था एक बार उस पर किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। लकड़हारा घने जंगल में रहता था और उस दिन भी रोज की तरह लकड़ी काट रहा था कि एक घुड़सवार वहां आकर रुका। उसने लकड़हारे से कहा, भाई मैं इस देश का राजा हूं, शत्रु के आक्रमण के कारण अपनी सेना से अलग हो गया हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला सकते हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, पास ही मेरी झोपड़ी है, वहां चलकर आप हम गरीबों का आतिथ्य स्वीकार करें। रास्ते में राजा ने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम जंगल के मार्गों से परिचित हो? मैं शत्रु को घेर कर उस पर कई दिशाओं से एक साथ प्रहार करना चाहता हूं, क्या तुम हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो? कर सकता हूं महाराज, इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है, आप जिधर से भी जाना चाहेंगे मैं आपको जंगल के छोर तक पहुंचा दूंगा। राजा ने अपनी सेना को लकड़हारे द्वारा निर्देशित मार्गों से ले जाकर पुनः शत्रु पर आक्रमण किया और उसे पराजित करने में सफल रहा। कुछ व्यवस्थित होने के बाद उसने लकड़हारे को सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने अपनी मातृभूमि की सेवा की है, इसके लिए क्या पुरस्कार चाहते हो निर्भय होकर कहो। लकड़हारे ने उत्तर दिया, आप कुछ देना आवश्यक ही समझते हैं महाराज, तो कृपा करके किसी नई जगह मुझे लकड़ियां काटने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि हमारे इस जंगल में अब या तो बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष बचे हैं जो मेरी पहुंच के बाहर हैं, या फिर वे नन्हे नन्हे पेड़ हैं जिन्हें मैं समय समय पर रोपता जाता हूं। राजा ने प्रसन्न होकर एक पूरा चंदन वन लकड़हारे के नाम लिख दिया। कुछ वर्ष बीतने पर एक दिन राजा को उस लकड़हारे का ध्यान आया। उसने सोचा, चंदन की लकड़ी का व्यापार करके अब तो वह सुखी और खूब संपन्न होगा। उसने अपने गुप्तचर को आदेश दिया कि वह उसकी बदली हुई स्थिति के बारे में पता करे

0: और उसे साथ लेकर आई। राजा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब लकड़हारा पहले से भी जर्जर और विपन्न अवस्था में उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि उसके चंदन वन में अब थोड़े ही वृक्ष बचे हैं, शेष उसने साधारण लकड़ी के समान काट काट कर बेच दिए। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि साधारण लकड़ी और चंदन की लकड़ी के मूल्य और उपयोग में कितना अंतर है। ठीक उस अज्ञानी लकड़हारे के समान ही हम भी अज्ञानवश अपने मनुष्य जीवन रूपी चंदन वृक्ष का विकास और सदुपयोग करने के स्थान पर उपेक्षा और अवहेलना से उसे व्यर्थ करते रहते हैं और एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि हम कितनी अमूल्य संपदा गंवाते चले जा रहे हैं।
1: अमूल्य जीवन निधि, अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम में। ये हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फसलों में रासायनिक खाद के प्रयोग में सावधानियां विषय पर डॉक्टर श्याम लखनपाल से चंद्रजीत यादव की बातचीत।

0: किसान भाई, देखा आप तरह तरह के फसल के अपने खेत में जो रासायनिक खाद के प्रयोग करत है अपने खेत में अपने फसल में, उनमें कौन कौन बात पे विशेष तौर पे सावधानी बरते की जरूरत होते है, एकर जानकारी हो बहुत जरूरी बाटे। दिखाई है जानकारी देख ले आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर राम लखन पाल भैया, जो उनकी ही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया, आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। और हम आपसे जाने चाहत बाटे कि जौन रासायनिक खाद बाटे एकर प्रयोग हमारे किसान भाई कैसे करें, कौन कौन सावधानी के बरतें अपने खेत में रासायनिक उर्वरक के डाले के समय, एकर विषय में थोड़ा सा फरियाई के बताऊँ।
1: किसान भाइयों, रासायनिक खाद एवं उर्वरक, रासायनिक खाद को ही उर्वरक भी कहा जाता है क्योंकि कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद, जो कार्बनिक खाद होते हैं वो फसलों के अवशेष, घर का कूड़ा कचरा और पेड़ों के पत्तियों इत्यादि जानवरों के मलमूत्र से तैयार किया जाता है,
0: जी
1: जिसमें कार्बन अधिक होता है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उसे हम कार्बनिक खाद के रूप में जानते हैं। इसी के साथ ही रासायनिक खाद वो खादें होती हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित या अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम या शून्य होती है।
0: भैया, जवन ये रासायनिक खाद के बात करते बाटे ही, तो भाई ये रासायनिक खाद के जवन किसान भाई अपने खेत में डालत हैं, चाहे भाई बुआई से पहले या बुआई के बाद, तो कौने बातन पे विशेष तौर पे उनका ध्यान रखे चाहे, का जवन माटी के जांच करावत हैं, जवन संस्तुति मिलत है उनका कि इतना तरह के जवन है तत्व तो बाटे ना, वही इन तत्वन के लिए इतना इतना खाद डाले के बे, का उही अनुसार डाले के बे या कुछ और तरीका बाटे जोने से वो रासायनिक खाद के इस्तेमाल करें।
1: रासायनिक खाद के प्रयोग के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है,
0: जी
1: उसकी हमने जांच कराई है या नहीं। तो अगर हम जांच करा लें तो उससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि जिस पोषक तत्व की कमी होती है हम उसी को रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा अन्य पोषक तत्व वाला उर्वरक डालने से हमारी जो है बचत होती है।
0: जी
1: और जब हम अधिक उत्पादन लेना चाहेंगे तो मिट्टी की जांच कराना नितांत आवश्यक है कि वो मिट्टी की प्रकार कैसी है, उसमें किस तरह की फसल चाहते हैं
0: जी
1: और कितना पोषक तत्व तो पहले से उपलब्ध है, कितना हमें देना है ताकि अधिक से अधिक पैदावार

0: मिल सके।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ बताऊं, जैसे कभी कभी होते किसान भाई माटी की जांच नहीं करवाते हैं, अपने मन से मनमानी तरीके से जितना उनके समझ में आवत है, या पड़ोस में देखा थे किसान भाई जितना डालत बाटे वही हिसाब से वो डाल देते हैं, तो ई इस तरह के भाई रासायनिक उर्वरक के प्रयोग कितना घातक बा उनके लिए, और पैसे के लिहाज से भी और माटी के लिहाज से ही, एकरे विषय में बताएं थोड़ा सा।
0: इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रासायनिक खाद है, अगर कोई किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं
1: जी
0: और अपने मन से डालते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम जो खाद खरीदते हैं वो बहुत कीमती होती है, महंगी होती है,
1: जी
0: उससे हमारी फसल की लागत बढ़ जाती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पौधों को उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस पोषक तत्व की अगर आवश्यकता नहीं है तो हमारी वो धनराशि बेकार जाती है। दूसरी चीज़, रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति और उसका स्वास्थ्य भी नष्ट होता है,
1: जी,
0: जिसमें छोटे छोटे जीवाणु जो सूक्ष्म जीवों के नाम से जाने जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि पौधे सॉलिड रूप में भोजन को नहीं लेते हैं, वो लिक्विड रूप में लेते हैं, या दूसरे भाषा में कहें कि पौधे तत्वों को आयनिक फार्म में लेते हैं। अगर वो आयनिक फार्म में मृदा का पीएच और सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक है तो वो तत्व पौधों को उपलब्ध होगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जांच कराने के बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दूसरी चीज़, रासायनिक उर्वरकों को जब प्रयोग करते हैं
1: जी
0: तो उनके कुछ तरीके हैं कि जो उर्वरक देर में उपलब्ध होता है उसको हम थोड़ा पहले मृदा में मिलाते हैं, और जिसके पोषक तत्व तो जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं
1: जी
0: उसको हम तुरंत मिलाते हैं या कुछ समय के बाद ही मिला देते हैं। जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग फसल उगने के बाद ही छिड़काव के रूप में करते हैं,
1: जी
0: या जहाँ पर हमें लगता है कि शुष्क मृदा है और उसके लिए पानी की आवश्यकता होती ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर उपलब्ध कम है, तो वहाँ हम छिड़काव के रूप में, स्प्रे के रूप में भी हम घोल बनाकर उर्वरक का घोल से प्रयोग करते हैं, ताकि वो कम से कम पानी में भी फसल को लाभ मिल सके। दूसरी चीज़ होती है कि जहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर किसी क्रॉप में उर्वरक प्रयोग करना है
1: जी
0: तो उसके लिए वो हम, एक होता है बैंड प्लेसमेंट, दूसरा होता है साइड ड्रेसिंग, एक टॉप ड्रेसिंग, तो ये किस फसल में किस तरह से प्रयोग करना है, अगर हमें जड़ के पास ही उपलब्ध कराना है तो उसके लिए हम वो उर्वरक उसकी जड़ के पास देते हैं ताकि वो पौधों को जल्दी अवेलेबल हो जाए।
1: तो भैया ये तो बुआई के समय कुंड में जहां बीज पड़े वहीं खाद भी डालनी पड़े।
0: बिल्कुल, फास्फोरस और पोटास पौधों को देर में उपलब्ध होता है क्योंकि वो गतिशील कम होता है,
1: जी,
0: तो इसलिए उसको हम बुवाई के समय बीज से 4-5 सेंटीमीटर नीचे
1: हाँ
0: बुवाई करते हैं और उसके बाद उसमें बीज बोते हैं। बीज और खाद को एक साथ नहीं बोना चाहिए, खासकर दलहनी फसलों में,
1: जी
0: क्योंकि उसमें उसके अंकुरण को प्रभावित करता है, इसलिए उसको मृदा के नीचे यानी बीज के नीचे ही 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर खाद को प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ बताऊँ, जैसे कुछ किसान भाई ऐसे ना हैं कि भाई खेत तैयार कर लेहन, ओकरे बाद जो ना है उर्वरक के पूरे खेत में छिटको ऐसे छीट दहन, और ओकरे बाद फिर बुआई कर दहन, बीज भी छिटकवा कर दहन, तो ये कितना अच्छा तरीका बा या कितना ये फायदेमंद उनके लिए होते, एकरे लिए बताओ।
0: छिटकवा विधि से जब हम बीज और खाद दोनों करते हैं तो उसके बाद उसकी जुताई करनी चाहिए ताकि फसल रो में हो जाए यानी
1: जी
0: कतार में आ जाए और खाद भी हमारी मिट्टी में दब जाए, क्योंकि ऊपर जब खाद रहेगी तो जब भी उसका घुलनशील अवस्था में जाएगी तो या तो वो वायुमंडल में चली जाएगी गैस के रूप में,
1: जी
0: और जब नीचे होगी तो फसलों को प्राप्त होगी, अथवा वो अघुलनशील स्थिर अवस्था में होकर के मृदा में नीचे पड़ी रहेगी, जो कि पौधों को बाद में अगर वो उपयुक्त मात्रा मिलती है तो उपलब्ध हो सकेगी।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहत बाटी कि जैसे भाई बातचीत होत रहे कि लोग मनमाने ढंग से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक के प्रयोग केहन जौने के भाई गलत परिणाम भी सामने आवत बाटे, तो ई जौन भाई प्रयोग करत है रासायनिक उर्वरक के, ई माटी के कौने स्तर तक खराब कर सकत है और भविष्य में उनमें फसल कैसे प्रभावित हुई।

0: रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करते हैं तो जिस उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसमें दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय होता है जो अम्लीयता पैदा करता है
1: जी
0: और एक क्षारीय होता है जो क्षारीयता पैदा करता है। इन दोनों प्रकार की मिट्टियों में फसलोत्पादन प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब मृदा का पीएच मान प्रभावित होता है
1: जी
0: तो मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको सड़ने करने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता

0: जी
1: से अधिक बनी रहेगी और हमें फसलों को लाभ मिलेगा।
0: का मतलब कि डॉक्टर साहब आप कुल मिलाई की काहे जात बाटें कि भाई अगर रासायनिक उर्वरक के कोनो भी फसल के लिए प्रयोग करे बाटे तो पहले माटी के जांच हो चाहे माटी के जांच में जोने तत्व के कमी हो जितने मात्रा में दे के जरूरत हो उतना दे चाहे तबे जो है भरपूर फायदा होए लागत कम लागे और उत्पादन अच्छा मिले।
1: बिल्कुल, आजकल जो एक नई पद्धति आई है कि एकीकृत पोषक तत्व तो प्रबंध, उसमें रासायनिक खाद, कार्बनिक खाद, बर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाने जाने वाले उर्वरक का सभी का समावेश करते हुए अगर हम करें तो फसल उत्पादन और मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जो सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम से जानी जाती है, वो उसी आधार पर जानी जाती है।
0: तो डॉक्टर साहब आप आएँ और इतना बढ़िया जानकारी दें कि रासायनिक खाद के कैसे प्रयोग करें में सावधानी बरतें चाहे ये सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फसलों में रासायनिक खाद के प्रयोग में सावधानियां विषय पर डॉक्टर श्याम लखन पाल से चंद्रजीत यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव की वार्ता, पीलिया का आयुर्वेदिक उपचार।
1: पीलिया, जिसे कि हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, हमने अक्सर इस रोग के बारे में सुना है। आयुर्वेद इसे रोग मानता है, जबकि मॉडर्न साइंस इसे लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों का एक प्रमुख लक्षण मानता है। पीलिया के अनेक कारण हो सकते हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियों से अक्सर हमारा सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है और इसे हम जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जानते हैं। पीलिया का एक मुख्य कारण है खान पान, जैसे कि अधिक तैलीय, मसालेदार, अधिक नमक वाला या फिर बहुत गर्म भोजन, अम्लीय भोजन और साफ पानी का प्रयोग न करने की वजह से अक्सर ये रोग हो जाता है। जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं या बाहर भोजन ज़्यादा करते हैं, उनमें अक्सर ये रोग देखा जाता है। पीलिया के लक्षण क्या हैं? वैसे तो पीलिया के बहुत से लक्षण हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा दिखता है, जिससे कि हम सभी परिचित हैं, वो है आँखों का और त्वचा का पीला होना। जितना ज़्यादा पीलापन होगा, पीलिया भी उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा उल्टी होना और अत्यधिक कमजोरी होना भी इसका प्रमुख लक्षण है। पीलिया के रोगी का खान पान सही से नहीं हो पाता। रोगी जो भी खाता है, या तो वो उल्टी कर देता है या फिर पेट की गड़बड़ी के कारण भोजन का पाचन भी सही से नहीं हो पाता, इसलिए अत्यधिक कमजोरी हो जाती है। इसीलिए पीलिया के रोगी को अधिक मात्रा में ग्लूकोज का प्रयोग करने को कहा जाता है। लगभग 50 से 75 ग्राम ग्लूकोज रोज लेना चाहिए। गन्ने का जूस पीना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पीलिया का घरेलू उपचार आप ध्यान से सुने। पीलिया होने पर डरने या घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस संयम रखकर इसका घरेलू उपचार करें और साथ ही जो भी सावधानी मैं आपको बता रही हूं उसका पालन करें। जैसे कि एक छोटा चम्मच भुना जौ के पाउडर को एक गिलास पानी में डालें और एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर दिन में दो बार लें। एक छोटे चम्मच तुलसी की पत्ती के पेस्ट को एक गिलास मूली के जूस के साथ दिन में दो बार ले सकते हैं, या फिर एक छोटे चम्मच एलोवेरा को काला नमक और मुलैठी के पाउडर के साथ सुबह सुबह खाएं और ऐसा 10 दिन तक करें। बहुत आराम मिलेगा। करेले को मसल कर उसका जूस निकाल लें और चौथाई कप रोज सुबह सुबह लें। 4-5 टमाटर आधे लीटर पानी में 15 मिनट तक उबाल लें, फिर इसका छिलका निकाल कर इसे मसल कर छन्नी से छान कर इसका जूस निकाल लें और रोज सुबह ये जूस खाली पेट पिए। 7 बादाम, इसके साथ 2 सूखे खजूर, साथ में 3 छोटी इलायची को रात भर पानी में भिगो के रखें। सुबह इसकी चटनी बनाकर 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शुद्ध मक्खन के साथ अच्छे से मिलाकर रोज एक बार खाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पीलिया होने पर हल्दी का प्रयोग या फिर पीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि आगे की

0: चिकित्सा हल्दी से ही है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में 3 बार पिए, ये एक अचूक इलाज है। इसके अतिरिक्त अपने भोजन में मूली के पत्तों का जूस, पपीते के पत्तों की चटनी को शहद में मिलाकर, या फिर साफ तरीके से निकाले हुए गन्ने के रस में नींबू मिलाकर, या फिर केले को शहद के साथ प्रयोग करें। पीलिया में अधिक काम करने से भी बचना चाहिए और अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। जो लोग ईंट के भट्टों पर या धूप में काम करते हैं, उन्हें तो पूरी तरीके से ये काम रोक देना चाहिए। तैलीय और मसालेदार भोजन बिल्कुल न लें। गेहूं, जौ, मूंग, अरहर, चावल का ही प्रयोग भोजन में करें। आलू, गोभी और बैगन का प्रयोग तो बिल्कुल भी न करें। पपीता, अमरूद, सेब और आम का प्रयोग भी बिल्कुल न करें। भारी पदार्थों को जो कि पचने में गरिष्ठ हो, उनका प्रयोग भी नहीं करना है। मक्का, बाजरा, चना दाल, काला चना, इसका आप प्रयोग खूब कर सकते हैं। समय पर भोजन अवश्य करें। कच्चे भोजन को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धुल लें। थोड़ा थोड़ा भोजन खाएं और दिन में 3 से 4 बार में भोजन करें। इसके साथ ही 2 से 3 लीटर तक पानी का प्रयोग भी करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव की वार्ता, पीलिया का आयुर्वेदिक उपचार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है और शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित संजीव अभ्यंकर का गायन, दिन में 12:15 पर पंडित CR व्यास का गायन और रात 10:30 पर संगीता शंकर का वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर वंदना खेर के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 10:30 पर लोकगीत के कलाकार हैं रश्मि भारती। सुबह 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, दिन में 11:30 पर सुनेगा कार्यक्रम किस्सा गोई, वाचन स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति है मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहने सुनेंगी नीलम श्रीवास्तव से अवधि कहानी, साथ ही आप सुनेंगे हेम श्रीवास्तव के गाये लोकगीत। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा और शाम 5 बजे फिल्म संगीत। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे महिषेंद्र उपाध्याय और ज्ञान सिंह पटेल की बातचीत। शाम 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम में कवि होंगी अमिता मेहरोत्रा और अभिषेक केसरवानी। रात 8 बजे फिल्म संगीत, रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: आदितवन्तौ। भारतचीनयोः विशेषप्रतिनिधीनां सीमाविवादसम्बद्धवार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंगनगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए मशाल फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने और रचना है जावेद अख्तर की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

अभी आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर की बात। कहा, भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार। पड़ोसी देश नेपाल की बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परीक्षा परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में कल सुबह आई अचानक बाढ़ से अंतिम समाचार मिलने तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इस बीच नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों सहित देश भर में 1500 जगहों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेने को कहा। इस बीच देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी चिकित्सा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जाँच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से

0: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के अनुसार प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की मातृशक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
1: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
0: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस सेवा के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन आज रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर कल 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन आज रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर कल सुबह 6:30 लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में कृषि उत्पादकता और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए आयोजित समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ करने और प्रदेश के कृषि भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्री सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप आज यूपी के अंदर जमीनी धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 MOU उसी कड़ी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाया गया है और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो 4 MOU हुए हैं ग्लोबल एंड नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, ITC के साथ और एक्वाड्रिस के साथ, ये केवल एक MOU नहीं है कि हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने और यूपी की कृषि के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक हम सब का एक संकल्प भी है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परिणाम कल जारी कर दिए। आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आयोग की ओर से बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल करीब 13,00,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का कल गाजियाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो करीब 89 वर्ष के थे। उन्होंने वर्ष 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर की बात। कहा, भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार। पड़ोसी देश नेपाल की बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं

0: को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन, राग है भैरव।

अभी आप सुन रहे थे पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन राग था भैरव। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे केदार पंडित, हारमोनियम पर प्रमोद मराठे। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलप्रासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कम्बल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807

0: और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि

0: 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। अब खबरें तफसील से। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया। कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुक्काम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासिरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से यगांगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बाहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इधर पेशिंग में भी भारत के सिफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकाम से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से 8 पनबिजली प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
0: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब

0: उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माय भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हर ज़िले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके ज़रिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक ज़िम्मेदारी, रज़ाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के ज़रिए नौजवान अफराद को खेलों से मुतालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नज़रियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निज़ाम के बारे में जारी मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा, जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए मदऊ किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए के ऐन मुताबिक हो रहा है, जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम अम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है, क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैन्स और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकिस के जरिए प्याज 35 रुपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वो गुजरात विद्यापीठ के तकसीम असनाद की 72वीं तकरीब में शिरकत करेंगे और अहमदाबाद में आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनाब अमित शाह अमरेली जिले के दुधला इलाके में नौ तामीर शुदा हैथनी झील का इफ्तिताह करेंगे। इसे हरे कृष्णा फाउंडेशन ने तैयार किया है। बाद में वजीर दाखिला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें वो आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सपहर को जनाब अमित शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां तलबा से खिताब भी करेंगे। बाद में वो भोपाल के खाडलोदिया हलके में लोक दरबार में शिरकत करेंगे, जहां वो मकामी लोगों से बात करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त की निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तियाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिर से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसुलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मुअसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी ख्वातीन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़

0: समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजाम ने H-1B वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर की नई दरख्वास्त फीस तजवीज की थी। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। यह कदम एक अहम तारीखी तस्फी के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्ता कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बैन अल-अक़वामी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के त्रिलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचियोन में आलमी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। ये चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इनफरादी पुमसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक़िद हुई नेशनल ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने नेपाल में आए भयानक सैलाब से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, नेपाल में सैलाब से तबाही, 100 से जायद अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नेपाल के वजीर आजम बालेन शाह से फोन पर बातचीत और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहमी का वादा करने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने इस यकीन दहानी को अहमियत दी है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ है। अखबार इनकलाब ने तेलंगाना में सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत को कौमी सफ़े पर जगह दी है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और

0: अमेज़ॉन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700

0: मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, मैं सोनम लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, हम बात करेंगे जीवन के पहलू सुख और दुख की। सुख में समय कब निकल गया इसका जहाँ आभास तक नहीं होता, वहीं दुख में समय रुका ठहरा सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहाँ भी मिलता है आनंदमय लगता है। सुख में थकान की अनुभूति नहीं होती। सुख और दुख जुड़वा भाई के समान है जो सदैव एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जीवन में सुख और दुख की हम बात कर रहे हैं श्रोताओं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी दुखों की छांव। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना स्वाभाविक है। हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहें, सफलता मिले और कोई परेशानी ना आए, क्या ऐसा संभव है? नहीं। दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सुख केवल धन दौलत या बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। परिवार के साथ बिताया हुआ समय, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने प्रियजनों की मुस्कान देखना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, सभी सुख के ही रूप हैं। कई बार छोटी छोटी खुशी भी हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। आइए सुनते हैं ये गीत, लौटते हैं उसके बाद अपने कार्यक्रम में।

दुख जीवन का वह पहलू है जिससे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बच नहीं सकता। असफलता, निराशा, अपने से दूरी या कठिन परिस्थिति दुख का कारण बनती है। दुख हमें धैर्य रखना सिखाता है और परेशानियों से सामना करना सिखाता है। यदि जीवन में केवल सुख ही हो तो शायद हमें सुख का महत्व महसूस ही ना हो। उसी तरह दुख के बाद मिलने वाली छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है, जैसे बारिश के बाद साफ आसमान और धूप अधिक सुंदर लगती है। ठीक वैसे ही कठिन समय के बाद मिली खुशी का आनंद भी अधिक होता है। दुख और कठिनाइयाँ हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। वे हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास देती हैं कि वे हमें समझाती हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। जिस प्रकार दुख में धैर्य रखना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार सुख में भी संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है।

0: सुख दुख तो अतिथि के समान है, बारी बारी आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
9: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
8: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
9: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
10: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
11: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ

0: सांस लेने का हौसला देता है।
1: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
0: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
1: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
0: यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और पमेला जैन ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म का ये गीत उदित नारायण और पमेला जैन की आवाजें थी। संगीत दिया था राजेश रोशन ने, रचना थी इब्राहिम अश्क की। लीजिए अब सुनिए मस्त फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। संगीत है संदीप चौटा का और रचना है नितिन रायकवार की।

श्रोताओ, अभी आपने सुना मस्त फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: और श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और फर्रुखाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रामकुमार मिश्र का।
2: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर

0: विपिन कुमार जैन ने विकास खंड की ग्राम पंचायत बलुआ बलुई का स्थलीय भ्रमण कर ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव का भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया तथा उन्हें मिल रही सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील गाँव में राहत एवं बचाव दलों द्वारा बाढ़ राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में तैनात राहत एवं बचाव दलों द्वारा ग्रामीणों स्कूली बच्चों को बाढ़ आपदा समेत अन्य आपदाओं से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों, बचाव के उपायों आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। जनपद बलरामपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत जिले के युवा स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार शुरू कर अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 331 युवकों को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है।
1: ऐसे युवा जो कोई विनिर्माण के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रियों से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, वो युवा 1 लाख से लेके 5 लाख तक लाभान्वित हो सकते हैं। लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 1054 फाइल प्रेषित की जा चुकी है। 1400 का भौतिक लक्ष्य है और उसके सापेक्ष 1054 पत्राव बैंक को प्रेषित किया जाए।
0: जनपद में परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, छोटे परिवारों के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर से परिवार नियोजन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद की मिश्रित आबादी एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने संपूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 लागू दी है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह कदम आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने, भ्रामक प्रचार करने या वैमनस्यता फैलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि खरीफ मौसम में कृषक बंधुओं को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से होने वाले संभावित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ मौसम में धान, केला एवं मिर्च फसलों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। प्रदेश में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र सदर अंतर्गत बलरामपुर सावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर गोंडा बलरामपुर रेलखंड में बलरामपुर एवं झारखंडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित संपार संख्या 136 स्पेशल 3E पर प्रस्तावित 2 लेन रेल उपरगामी सेतु निर्माण का कार्य भूमि पूजन बलरामपुर में सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन विधायक सदर पलटू राम द्वारा वैदिक मंत्रों चार एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेल उपरगामी सेतु के निर्माण से रेल फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने तथा वाहन चालकों एवं आमजन को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 20 अगस्त को पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रवर्तन विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद की सभी तहसीलों में प्रमुख मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। जनपद बलरामपुर में 22 अगस्त को नवागत पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश, कानून व्यवस्था का अनुपालन, महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
2: सबसे पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जन सुनवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा और समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तीसरी जो है, पुलिस के व्यवहार को संयमित और नियमित कराया जाएगा जिससे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा हो। ये 3 हमारे फोकस के बिंदु होंगे।
0: जनपद बलरामपुर में श्रावण माह पर जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यालय स्थित झारखंडी मंदिर, राजापुर भरिया स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।
3: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
4: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली

0: चुनाव का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए तथा अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य उठाएं। बैठक में पेयजल, सिंचाई, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, विधायक डॉ. सुरभि, एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत चेक, ब्रेल किट, करौनी पत्र, आवास योजना की चाबी तथा अन्य प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने फरुखाबाद जनपद के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के प्रभाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बेटियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ केक काटकर 20 नवजात बेटियों और माताओं को खिलौने, बेबी किट, मिठाई का वितरण किया। उपाध्यक्ष जी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कर ड्रेस और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान बुजुर्गों को माता पिता समान बताते हुए उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। फरुखाबाद जनपद में बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद हेतु जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदनों का पुनः सत्यापन कराने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित बैंक के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने KCC, SHG, PMEGP, MYSPI और मुद्रा जैसे कार्यक्रमों में गति लाने तथा लंबित ऋण आवेदनों को बिना अविलंब निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ सहित अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को समयबद्ध ढंग से राहत सामग्री, खाद्यान्न, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखने के साथ साथ संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
1: फरुखाबाद में गंगा जी और रामगंगा की वजह से बाढ़ आती है और इस बार गंगा जी का स्तर जो चेतावनी बिंदु है उससे ऊपर गया है बट खतरे के निशान से अभी नीचे है। 3 गांव मरून हुए हैं, उनका सभी का विजिट किया गया है और 300 लोगों को बाढ़ शरणालय में विस्थापन किया गया है। शरणालय में सभी व्यवस्थाएं की गई है, हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, फॉगिंग छिड़काव, कुक्ड फूड वहाँ पर दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए वहाँ पे क्लासेस भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा गाँव में जो आपके पशु है वो भी प्रभावित हो रहे हैं तो उसे पशु शरणालय की भी व्यवस्था की गई है और उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है।
0: फरुखाबाद जनपद में ऑपरेशन ग्राम संवाद का आयोजन पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल एवं क्षेत्राधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले गांव में एक दिन बीट की सूचनाओं, स्ट्रीट शीटरों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रति जानकारी एकत्र करेंगे। इस ग्राम संवाद का मुख्य उद्देश्य गाँव के संभ्रांत लोगों से बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे लोग बेखौफ होकर आपराधिक प्रवृत्ति एवं स्ट्रीट शीटरों की जानकारी बिना डर के पुलिस से साझा करें, भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सके।
2: इसमें सभी थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल, क्षेत्राधिकारी किसी भी एक दिन अपने क्षेत्र के गांव में जाएंगे, वहां पे जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो बीट की सूचनाएं हो गई या फिर HS की सूचनाएं हो गई, सी प्लान ऐप में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी सूचनाएं हो गई, इन सारी चीजों से एक तरह से संवाद स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है इस पूरे योजना के तहत।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: आज की पेशकश आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ शाइस्ता जाहिद का सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, ईद मिलादुन्नबी पर समात फरमाएं। खुसूसी उर्दू प्रोग्राम तहरीर है मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब की, सदाकार हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब, जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब और जनाब शमसुल आरफीन साहब।
2: रात के

तकरीबन 3:32 हो रहे थे जब मैंने अपना तवाफ पूरा किया। खाने काबा का सहन दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन मेरी नजर में दूधिया रोशनी से ज्यादा खुदाए जुलजलाल के मुकद्दस अनवार से मुनव्वर था ये पाक सहन। मेरे अलावा भी बहुत से अफराद तवाफ़े काबा में मशगूल थे। कुछ लोग दुआएं कर रहे थे तो कुछ नमाज में अपने रब के रूबरू उसकी सना बयान कर रहे थे। तवाफ के बाद की नफल पढ़कर मैं एक कोने में बैठ गया। मन में ख्याल ये था कि थोड़ा आराम कर लूं, फिर तहज्जुद पढ़ूंगा। उस वक्त फरहत बख्श हवाएं चल रही थी जिससे रूह तक तस्कीन महसूस हो रही थी। मैं उसी जगह पर लेट गया, कहीं से कुरान की तिलावत की सदा आ रही थी।

0: उसे सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि मेरी आंख खुल गई। थोड़ी देर कबल जिस खाने काबा का सहन लोगों की इबादतों से पुरनूर था, उसी खाने काबा के सहन में मेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं मुतहय्यर होते हुए इधर उधर देख रहा था कि मकामे इब्राहिम से दो नूर नमूदार हुए जिनका कद हद्द निगाह तक बुलंद था। उन दोनों में एक नूर नुकरई था जबकि दूसरे का तिलाई। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ पहुंचे और एक साथ सलाम किया। मेरे मुंह से बमुश्किल से सलाम का जवाब निकला। फिर मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? नुकरई नूर से आवाज आई, मैं वक्त हूँ। और तिलाई से आवाज आई, मैं हिजाज हूँ। लेकिन आप लोग इंसानी शक्ल में और जबान भी वो जो मैं समझ सकता हूँ, भला ऐसे कैसे? इस पर वक्त ने जवाब दिया,
1: क्यों, क्या आप खालिके कायनात की कुदरत पर शक करते हैं?
0: अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन आप लोगों का कद इतना बुलंद है कि आपसे बात करने के लिए मुझे अपना सर ऊपर उठाना पड़ रहा है।
2: अच्छा रुको, हम लोग तुम्हारे कद के बराबर आ रहे हैं।
0: फिर देखते ही देखते वो दोनों मेरे कद के बराबर हो गए। लेकिन उन दोनों से नूर फूट रहा था जिससे आस पास सब कुछ मुनव्वर नजर आ रहा था। फिर वक्त ने कहा,
1: तुम अभी मन में ये सोच रहे थे कि आज से 1450 साल पहले कैसा रहा होगा ये खाने काबा जब हमारे नबी का दौर था।
0: बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको ये इल्म कैसे हुआ?
1: जिस खुदा ने तुम्हारे रूबरू इंसानी शक्ल में हमें भेजा है उसी रब ने ही ये बताया है।
0: ओह अच्छा, सुभान अल्लाह।
1: आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वक्त में जाना पड़ेगा।
2: बिल्कुल ये वक्त है, इन्होंने नबी के जमाने का मुशाहिदा किया है। लेकिन वक्त भाई, मेरी गुजारिश है कि आप नबी की विलादत से कबल के हालात सबसे पहले मेरे यानी हिजाज की सरजमीन से बताइएगा।
1: मैं पहले मक्का, मदीना, ताइफ और शुमाल मगरिब के इलाके से शुरू करूंगा। दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का फर्क है। ये वो दौर था जब इंसानियत शर्मसार हो रही थी। गुनाहों की बू जज़ीरतुल अरब ही नहीं बल्कि पूरे आलम में फैली थी।
0: गुनाहों की बू, मैं कुछ समझा नहीं।
2: वक्त भाई, जज़ीरतुल अरब की जुल्मतों पर कुछ मैं अर्ज करूं?
1: जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
2: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो लोग जाहिल या अनपढ़ थे, उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो लोग अखलाकी और रूहानी तौर पर बिल्कुल जाहिल थे।
0: अखलाकी जाहिल, मैं समझा नहीं।
2: चलिए मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। दरअसल ये लोग सहरा नशीनी और खाना बदोशों जैसी जिंदगी गुजारते थे और उसी के आदि हो चुके थे। मुआशरे की फलाह के लिए कोई बेहतरीन उसूल नहीं था।
1: हिजाज साहब, आप उस मुआशरे की खातीन का जिक्र करें कि उनको क्या हुकूक हासिल थे।
2: जी बिल्कुल, चलिए हम आपको एक कबीले की तरफ ले चलते हैं।
0: हिजाज ने अपने हाथ हवा में उठाकर उसको गोल दायरे में खींच दिया। देखते ही देखते एक दूसरा मंजर सामने आ गया जहां दो पहाड़ियों के दामन में एक कबीला आबाद था जिसे बनू तमीम कहते हैं।
2: ये बनू तमीम कबीला है। वैसे तो औरतों के हालात

मेरी आंख खुल गई। मैंने नजरें चारों तरफ दौड़ाई तो खाने काबा में अब इंसानों की तादाद अच्छी खासी हो गई थी। फजर की अजान हो रही थी। अब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने नींद की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की जियारत कर

0: इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम ख़त्म होता है। आदाब।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज़ से, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 9:50 हुए हैं और अब चलिए आपको लिए चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े परंपरागत लोकगीतों की ओर। कार्यक्रम है
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं वंदना खेर। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये भजन।

अभी आप वंदना खेर के स्वर में ये गीत सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के

0: अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रूपये देने की पेशकश की है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली क्षेत्र पहुंचने की उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। भारत 5वें और अंतिम दिन श्रीलंका की पारी को जल्दी समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। वहीं वीर चोटरानी और वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वीर ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलविन सेंथिल कुमार ने कल मलेशिया के एन योव एनजी को 3-0 से मात दी। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटर वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए लूडो फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ में संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है संदीप श्रीवास्तव की।

टू स्टेट्स। अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना, बेनी दयाल की आवाज थी, संगीत गीत था अमिताभ भट्टाचार्य का। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए तमाशा फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में संगीत दिया है ए आर रहमान ने, रचना है इरशाद कामिल की।

आइए अब सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत शान और राशिद खान की आवाजों में। संगीत प्रीतम का है, रचना है इरशाद कामिल की।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए सुनिए कल हो ना हो फिल्म का ये गीत शान और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और रचना है जावेद अख्तर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कल हो ना हो फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं रश्मि भारती। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप रश्मि भारती के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं प्रसिद्ध गायक मुकेश। आइए सुनते हैं इनके गाए हुए प्यारे प्यारे से नगमे।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार।

मिलन, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज के हमारे कलाकार हैं मुकेश कुमार, जिनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1923 में। इनका सफ़र रहा 27 अगस्त 1976 तक का। जिन्हें केवल मुकेश के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा में के एक महान और अमर पार्श्व गायक थे। उन्हें अपनी दर्द भरी और सुरीली आवाज़ के लिए मैन विद द गोल्डन वॉइस भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा नगमा, फिल्म का नाम

उनकी आवाज में एक खास दर्द और गहराई थी, जिसके कारण उन्हें दर्द भरे गीतों का बादशाह भी कहा जाता था। मुकेश को अभिनेता राज कपूर की आवाज माना जाता था। उनके गाए कई गाने राज कपूर पर फिल्माए गए और अमर हो गए। 1973 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं देखा है के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आवारा हूँ जिंदगी ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन कहीं दूर, जब दिन ढल जाए और कभी कभी, ऐसे गीत उनके बहुत ही प्रसिद्ध रहे। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा। मेरे हमसफर फिल्म का नाम है, मुकेश की आवाज़ है, साथ ही लता मंगेशकर, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने तर्ज बनाई है।

आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के में कुछ समय के लिए क्लर्क की नौकरी की। बचपन में वे केएल सहगल के गाने सुनते थे और उन्हीं की तरह गाने का प्रयास करते थे। एक पारिवारिक शादी में उनके गाने को सुनकर मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मुंबई बुला लिया। वहीं उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद के संगीत की विविधता की शिक्षा ली। साल 1941 में आई फिल्म निर्दोष में उन्हें बतौर अभिनेता और गायक का पहला मौका मिला। पहला हिट गाना रहा वर्ष 1945 में फिल्म पहली नज़र के लिए गाया गया दिल जलता है तो जलने दे। उनका पहला बड़ा पार्श्व गायक हिंदी हिट साबित हुआ। राज कपूर की आवाज़ 1950 से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने राज कपूर की फिल्में जैसे आवारा, श्री 420 और अनाड़ी के लिए कई अमर गीत गाए। मेरा जूता है जवानी, आवारा हूँ और दोस्त दोस्त ना रहा जैसे गीतों में उन्हें घर घर लोकप्रिय कर दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा अगला नगमा। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, आवाज़ है मुकेश की।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम। आज के हमारे कलाकार थे प्रसिद्ध गायक मुकेश। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में है।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम किस्सा गोई, वाचन है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।
2: किस्सा गोई।
3: दोस्तों नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
4: नमस्कार नेहा जी, दोस्तों को वंदना राठौर का नमस्कार।
3: दोस्तों किस्सा गोई के इस अंक में हम

0: हाजिर हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी और अफसाना नगार के साथ, शायद जिसकी बातें आपके हृदय को और जहन को इस कदर छू लेंगी कि जब आप कार्यक्रम के समापन तक होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद उसके रंग में आप ढल चुके हैं।
1: और जब उन कहानियों पर आक्षेप लगे तो कहानीकार ने कहा कि मैंने तो वो सब लिखा जो समाज में मुझे मिला, मेरी कहानी समाज का आईना है। और हम चाहते हैं नेहा जी कि इस कहानीकार की जितनी भी कहानियां हैं उनको पढ़ते समय एक भावना जो होती है करुणा की, इंसानियत की, वो अगर मन में रहेगी तब गहरे तक हम उसमें उतरेंगे और बहुत कुछ जान सकेंगे। और एक संवेदनशील मन का होना बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए।
0: बिल्कुल, उस अफसाना निगार ने एक बार कहा सबसे, मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं अनाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें परागंदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि इसके मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ।
1: दोस्तों, ये अल्फाज हैं उर्दू अदब के महान अफसाना निगार सआदत हसन मंटो साहब के, जिनकी जिंदगी उनके अफसानों की तरह न सिर्फ दिलचस्प थी बल्कि बेहद संक्षिप्त भी थी।
0: जीवन के 42.5 साल अपनी शर्तों पे जिए, उनकी शख्सियत में कभी रंग नजर आया लापरवाहियों का तो कभी देखी गहरी सोच भरी समझ, और उनकी लेखनी की बेबाकी तो सुभान अल्लाह कोई जवाब ही नहीं।
1: किसी ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने यानी मंटो साहब ने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। उर्दू भाषी समुदाय उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानता है तो फिक्शन के लिए उसका हवाला मंटो है।
0: ४० में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में जब उन्हें नौकरी मिली तो उन्होंने रेडियो के लिए बहुत कुछ लिखा। यहाँ नून मीम राशिद, कृष्णचंदर और उपेंद्रनाथ अश्क का उन्हें साथ मिला था। मंटो ने लगभग रेडियो के लिए 100 से शायद अधिक ड्रामे लिखे ना?
1: बिल्कुल, और फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका जुड़ाव अरसे तक रहा। विभाजन के बाद मंटो पाकिस्तान जा बसे। जीवन और लेखन का संघर्ष ऐसा रहा कि पागल खाने तक जा पहुंचे।
0: इस बात को जब हम सुनते हैं तो जो हृदय है वो करुणा से और गहन सोच से भर उठता है।
1: लेकिन नेहा जी, पागल खाने जाने के बाद भी उन्होंने कहानियां ढूंढी। तभी एक कहानी जो काले जई बनकर उभर कर आई थी, टोबा टेक सिंह, वो हमारे समक्ष निकल कर आती है।
0: दोस्तों, कस्सा गोई में आज खंजर को कलम बनाकर बनावटी रिश्तों और दोहरे समाज की तल्ख हकीकत को कुरेद कर अपनी रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने वाले विद्रोही रचनाकार मंटो की लिखी मार्मिक कहानी अब आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है
1: खोल दो।
0: अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए।
1: सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलाकिन समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा।
0: यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था।

0: गए। कई औरतें, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना नहीं मिली।
1: एक रोज वो उसी खदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरडा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज़ सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिनी गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है?
0: लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी।
1: कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वे उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा बेटा, मेरी सकीना का पता चला?
0: सबने यक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा। और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया।
1: शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे ही उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपर्द किया और चले गए।
0: कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा।
1: कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना सकीना सकीना।
0: डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं।
1: डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा। उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो।
0: सकीना के मुर्दा जिस्म में

0: इतकार कर रहा हो। दिल और रूह दोनों जख्मी से जान पड़ते हैं।
1: सच, मंटो साहब की ये मार्मिक कहानी खोल दो। विभाजन और उस दौरान हुई अमानवीय हिंसा

0: इतकार कर रहा हो। दिल और रूह दोनों जख्मी से जान पड़ते हैं।
1: सच, मंटो साहब की ये मार्मिक कहानी खोल दो। विभाजन और उस दौरान हुई अमानवीय हिंसा का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला दस्तावेज ही तो है। दोस्तों, खोल दो शब्द के दो अर्थ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मौन व्यंजना इसमें समाई हुई है कि एक तरफ डॉक्टर की ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोलने की मासूमियत दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ वहशी दरिंदों द्वारा औरत के साथ किए जुल्म की विभीषिका जो है वो भी नजर आती है।
0: हाँ, जीवन की सांसें हार कर भी उन्होंने अदब के दामन में जीत के वो किस्से टांगे जो युगों युगों तक पाठकों के दिल में हलचल पैदा करते रहेंगे।
1: सच, उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मंटो मेनिया से खुद को बचाना मुश्किल है।
0: एकदम सच। आज जब मैं मंटो साहब की कहानियों को पढ़ रही हूँ, उनके लिखे हुए अफसानों को पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मंटो किंगडम में आप अपने आप को पाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है,
1: क्योंकि वो समाज की कहानियाँ होती हैं, वो ऐसी जो हमारे आसपास फैली हुई होती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करके नेहा जी बढ़ जाते हैं आगे की, नहीं ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन मंटो ने खुद को इससे बचाया नहीं, बल्कि उसमें वो डूब गए और उसमें से जो बहुत सारी बातें थी, भावनाएं थी, जज्बात थे, एहसास जो छुपे हुए थे और जो सच्चाई थी, वो निकाल कर बाहर उसी रूप में हमारे सामने खड़ी कर दी।
0: 18 अगस्त 1954 को उन्होंने जफर जुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पर लिखा था, यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है। उनके सीने में कहानी लेखन के सारे रहस्य और राज दफन हैं। वो मानो मिट्टी के नीचे लेटा सोच रहा है कि वो बड़ा कहानीकार है या खुदा।
1: देखिए, 18 अगस्त 1954 को वो खुद ये बात लिखते हैं मंटो साहब, और इसके कुछ ही महीने बाद यानी 18 जनवरी 1955 को झूठी दुनिया का जो सच्चा अफसाना निकार था वो सदा के लिए खामोश हो गया। और नेहा जी,
0: जी,
1: आज जब मंटो साहब का जिक्र हम कर रहे हैं अपने किस्सा गोई प्रोग्राम में और उनकी कहानी को जब हमने पढ़ा, तो वो जो टीस थी, वो जो एक सोच उभरी, वो ज़रूर हमारे श्रोताओं के दिलों तक भी पहुंची होगी। वो सन्नाटा जो गूंज रहा था, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था, तो उन रहस्यों को हमारे जो श्रोता हैं वो ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे और वो ये बताएंगे कि उन्हें हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा।
0: और ये बताने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे जो हम पोस्टर्स अपलोड करते हैं उसके कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप अपने मैसेज को टाइप करके भेज सकते हैं, चाहे तो वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा नंबर नोट करिए, हमारा नंबर है
1: 800-492-6250। तो दोस्तों, किस्सा गोई के एक और नए रोचक अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।
2: किस्सा गोई,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा गोई, सआदत हसन मंटो पर आधारित। वाचन थे नेहा गुप्ता, वंदना राठौर के, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

लीजिए अब सुनिए हम बच्चे हैं हिंदुस्तान की फिल्म से ये प्यारा सा गीत रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, आवाज है प्रीति सागर की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवला

0: चपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिवशेर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The program was organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat, My Bharat. It was conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. Nearly 300 Indian tourists are among thousands who are reportedly missing after a flash flood swept through parts of the Nepal-Tibet border. Nepal Foreign Minister Khanal today said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Meanwhile, Nepal police today said the death toll rose to 162 in the flash flood on the Bhotekoshi River that wreaked havoc across three districts yesterday, originating in Tibet. The flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the

शाम 6:30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम होगा ग्रामीण भाइयों के लिए। इसके अंतर्गत सुनिए रश्मि भारती के गाए लोकगीत। 7:31 हिंदी कार्यक्रम होगा अमिता मेहरोत्रा और अभिषेक केशरवानी के काव्य कामोदी में काव्य पाठ सुनिए। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए प्रिया के गाए गीत व भजन। 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम सबरस। बज के 30 मिनट पे चर्चा का विषय सुनिए जो कि हम अपने दिल्ली के इनसे रिले करेंगे। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 10:30 पे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए संगीता शंकर का वायलिन वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

आयु है 19 वर्ष, बदन गहरा है, रंग गोरा है, ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच, बाल काले हैं, इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दे, पीपर ताली भगक पूर्वा थाना मंदाता, जनपद है प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 9238320223। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9238320228।

एक और सूचना सुनिए। राम बाबू सोनी के सूचना के अनुसार प्रीति सोनी आयु 15 वर्ष, गोल चेहरा है और कोई भी विशिष्ट पहचान नहीं है। इनकी जन्म 15 वर्ष के हैं और ऊंचाई 5 फीट है, रंग सांवला है। इन्होंने सफ़ेद लाइनिंगदार सलवार सूट पहन रखा है। ये 27 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। ग्राम फकीराबाद चिरारी कॉलोनी, थाना सराय अविकल, जिला कौसंबी। मोबाइल नंबर है 9267012439। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन, राग है शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। राग था शुद्ध सारंग, तबला पे संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता और ये हकीकत बुरे वक्त में ही समझ में आती है। तो इन सुंदर पंक्तियों के साथ आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। और पहले गीत की फरमाइश हमें की है ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य और अंजलि। भिलाई से उत्तम सिंह, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, नंदिनी और आयुष। आप सब सुनना चाहते हैं टाइगर जिंदा है इस फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गानों के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8004926250। और गानों की फरमाइश के साथ आप हमें कुछ अच्छे संदेश भी लिखकर भेज सकते हैं, जिन्हें हम इस कार्यक्रम में ज़रूर पढ़ेंगे। तो देखिए, एक श्रोता का संदेश है हमारे पास। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियाँ लिखी हैं कि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का उपयोग बड़ी ही खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटता है तो पानी की फुहार बन जाता है, मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, और जब बीज टूटता है तो एक नए पौधे का जन्म होता है।

इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब हम बता देते हैं, ये संदेश हमें गांव भूपिया से भेजा है रोशनी जी ने, और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है उस फिल्म का नाम है ये वादा रहा। और इस गीत की फरमाइश हमारे कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने की है, और उनके नाम हैं पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, कृष्ण और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

आजकल की इस आपाधापी वाली दुनिया में एक चीज़ तो बहुत ही महंगी होती जा रही है। जी हाँ, ये महंगी चीज़ है हंसी, मुस्कुराहट, जो बहुत ही कम दिखाई देने लगी है। किसी शायर ने भी क्या खूब बात कही है, किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हैं जो हमारे जीने का सहारा बनती हैं। तो अब आता है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें की है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, गुनगुन, मिट्टू और इनके परिवार के सभी सदस्य, कौशाम्बी से नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, श्रीजी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं रॉकी फिल्म का ये गाना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। देखिए लिखने वाले ने भी क्या बात लिखी है। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। और कहा तो ये भी गया है, धीरे बोलिए शांति मिलेगी, अहम छोड़िए बड़े बनेंगे, भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी, विचार कीजिए ज्ञान मिलेगा। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। और इस गीत की फरमाइश हमें की है त्रिपुरा से अविनाश आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, असम से अनुपम भट्टाचार्य, मथुरा से चौधरी महेंद्र सिंह, भजन लाल आगरा से राजू लवानिया और छिंदवाड़ा से टीक चंद अग्रवाल। आप सब सुनना चाहते हैं समाधि फिल्म का ये गाना, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के एक
1: नमस्कार है। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में 1 टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक

0: वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The Khelo India dialogue provided a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has reached 162. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal has said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. Earlier, Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and assured him of all possible humanitarian assistance. The National Disaster Response Force, NDRF, today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. The teams are prepared to undertake evacuation, relief and rescue operations in case of flooding or waterlogging. He said the first barrage on the Gandak River along the Indian-Nepal border at Valmiki Nagar in Bihar's West Champaran district is being closely monitored. So far,

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए एक जदीद खेलों का निज़ाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियों से लेकर जदीद तरबियती मराकज़ तक मुल्क भर में ऐसा स्पोर्ट्स सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों के टैलेंट को हर सतह पर पज़ीराई मिलती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के खेलों की सलाहियतों नौजवानों की ताकत को जोड़ने की मुहिम है।
1: इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत खेल शक्ति और भारत युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमली तौर पर खेलो इंडिया डायलॉग के तहत रियासत के तकरीबन 150 मकामात समेत मुल्क भर के 1500 मकामात पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नौजवानों से खिताब किया। इस तकरीब का अहतमाम मेरा युवा भारत ने कौमी खेलों के दिन की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर किया है। खेलो इंडिया डायलॉग ने नौजवानों को मुल्क के खेलों से मुतालिक स्कीमों से बराह रास्त जुड़ने और अपने ख्यालात का इश्तराक करने का मौका फराहम किया। ये तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक सेहतमंद नज़्म व ज़ब्त और खेलों से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान की तामीर और नौजवानों की ख्वाहिशात को कौमी तरक्की के मरकज में रखने के विजन के मुताबिक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान और तबाही पर दुख का इजहार किया। नेपाल के वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नेपाल को हर मुमकिन इंसानी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक की टीमें बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सैलाब की वजह से दोनों अजला में गंडक और नारायणी नदियों के पानी की सतह बढ़ने का खदशा है। सैलाब से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर के मकामी इंतजामिया को तमाम जरूरी तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नेपाल में फंसे हुए लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू किया। हमारे नामा निगार ने बताया कि मुतासर खानदान इस हेल्पलाइन के जरिए फौरी तौर पर मालूम शेयर कर सकते हैं।
2: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं हिंदुस्तान ने 37 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतालिक इमदादी सामान की दूसरी खेप नेपाल को भेजी है। बिशमूल अदवियात और खाने के पैकेट ये इंसानी इमदाद नेपाल को

0: पनगेट सुने बैठी सब बनी हरन के गंगा
1: और जया के
0: राम राम। देखा जया बहनी, आज हम सोचे थे कि कार्यक्रम शुरू करे से पहले थोड़ा से झलकी दे दे प्रोग्राम के अपने बहनी हरन के।
1: वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो देखा हम सब आज सुनब अपने प्रोग्राम में, अपने पनघटे पे हम सब बतियाब आज की बात में खुशहाल परिवार के मंत्र रक्षाबंधन के बारे में बात करब।
1: बिल्कुल।
0: और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल कल पूरे हो जाए ओकरे बारे में बात करब।
1: बिल्कुल सही।
0: और खूब सुंदर सुंदर गीत संगीत होई अपने पनघटे पे। और एक छोटी सी कहानी है रक्षाबंधन के, कैसे कल रक्षाबंधन भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा इतनी मनोरंजन और इतनी मतलब जानकारी भरी चीज़ें अपने पनघट पे हुई तो दिल थाम के बैठी हैं और खूब अच्छे से प्रोग्राम के सुन के मजा ली हैं। तो चला शुरू किया जाए आज अपन पनघट प्रोग्राम।
1: गंगा देखा तू इतनी जोर शोर से जोन है सब अपनी बहनी और इनका सब कुछ बताओ, तो देखा जब बात इतनी आज का कार्यक्रम में इतना जोश है तो सबसे पहले बात किया जाए। देखा हम सब लोग रक्षाबंधन के त्योहार मनाओ कल काले। हाँ और देखा पहले जोन हमारे बहनी लोगन है कितना देखा साज सज्जा आपन तैयारी के साथ जो ने राखी की खरीदारी कर रहे थे। हाँ। आपन साज सज्जा की भी ध्यान रखी थी और देखा मिठाई की व्यवस्था, देखा मायके जाएगी जो
0: जाएगी जो खुशी होते हैं अंदर से ना वो तो अलग ही होते हैं।
1: बिल्कुल सही। और देखा ओके साथ साथ देखा हमारे बहनी हरिन का कितना इंतजार रहते है आज कल के दिन का। हाँ। कि देखा राखी पर वो अपने मायके जाके अपने भाई की कलाई पे सुंदर सा रक्षा सूत्र बन गए।
0: बिल्कुल। तो देखा ये एक धागा है लेकिन उस धागे में इतना प्यार है कि मतलब कितना विश्वास है कि ये एक धागा हमारे भाई हमारे रक्षा करे। बहन हमारे जिक्र भाई ना है वो बहन ही बान थी तो उनका ही रहा था कि ये धागे में वो ताकत है कि जिंदगी भर वो हमारी रक्षा करिए।
1: और देखा जब तू ये बात कहो तो का देखा एक बात और बताई कि देखा ये जो मान्यता है ये मान्यता है कि एक बार जो ने भगवान कृष्ण की उंगली में तन को चोट लग गए रही तो द्रौपदी

0: दी जोन रही वहां पर साड़ी का टुकड़ा फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिए रही। तो कृष्ण द्रौपदी की आत्मीयता का याद रख के द्रौपदी का वचन दिए रहे कि जब कभी उनके ऊपर घोर संकट रही तो श्री कृष्ण उनकर रक्षा करिए। और देखा तब से ही जोन राखी का त्योहार है। हाँ, हम सब लोग मनाई थे
1: कितना बढ़िया। देखा सच में कुछ रिश्तन के शब्दन में बयान नहीं किया जा सकता है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और भाई बहन के रिश्ता भी कुछ ऐसे है, बचपन की वो शरारत याद आवत है ना, जब छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती रही और आज वही याद जोन बात चेहरे पे मुस्कान ले आवत।
0: बिल्कुल। और देखा जब बहनी अरे अपने अपने जब अपने ससुराल में होती और भाई जब अपने घर मतलब अपने घर में दूरी जब होते कुल मिला के बाद, तो देखा ये रिश्ता ना जाने तो गंगा की और मजबूत हो जाता है। कैसे देखा कभी कभी कहा जाता है ना कि दूरी होएगा तो ये रिश्ते में दूरी आएगी, नहीं जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो दूरी के बाद भी और प्रगाढ़ हो जाता है।
1: देखा भाई बहन के जो रिश्ता बस जब बचपन रहा था तब कितना अपन अपन सब लगा था, लेकिन एक टाइम के बाद रिश्तेदार बन जाता है।
0: हाँ,
1: लेकिन ये छोट छोट जो चीज होती जैसे राखी बांधव हो गए और त्योहार हो गए, ये एक दूसरे के आपस में जोड़त है, मिलावत है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: देखा भाई बहन रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि ते प्रेम विश्वास और रक्षा के संकल्प का भी होता है। और देखा जब जब ये त्योहार आवत है तो देखा परिवार माँ देखा भाई बहन के साथ साथ परिवारों में कितनी खुशहाली हो जाते है।
1: कितनी खुशहाली देखा रक्षाबंधन त्योहार गदीलन कितना बढ़िया से मनावत है, नवा कपड़ा ले एक बार देखा फुआ या दीदी बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आओ नहीं तो जिन्हें हंसी मजाक भी होते, लड़कियन कितना उत्साह रहा था कि देखा आज रक्षाबंधन था ना, आज हमरे राखी बांध जाए, हमारे गदेले सवेरे नहाए धोए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के तैयार होके बैठ जाते, दीदी जल्दी राखी बांधना देर होत बा।
0: बिल्कुल सही कहो गंगा। देखा घर के माहौल कितना अच्छा हो जाते है, और जब घर के माहौल अच्छा हो जाते तो देखा जब घर जोन होते है तो देखा परिवार के जोन है खुशहाली के बनावे के लिए जोन परिवार की खुशहालियों का बनावे के लिए कुछ मंत्र भी होता। और देखा कुछ मंत्र उनमा ये होते है कि देखा जब हम परिवार के बारे में सोची थी तो हमेशा दूसरे की खुशी का पहले स्थान पे ध्यान रखेगा,
1: ध्यान रखेगा तब तो खुशहाल परिवार होता है ना।
0: तो देखा जब परिवार खुशहाल होता तो बहनी हरिन का देखा हमार जो बहनी हरिन है कहा जाते कि देखा खुशहाल जो उन परिवार होते हैं उनकी जो नींव होती है हमार बहनी हरिन होती है। देखा वो संभाले थी सब कुछ, पर देखा परिवार है तो उतार चढ़ाव भी रही है, नोक झोंक भी रही है, और देखा आपसी मतभेद भी रही है, लेकिन एक के बावजूद अपने परिवार का परिवार के सदस्यों से देखा प्रेम से बोले, उनका सम्मान का चुने, कभी भी ऐसा ना करें कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होएगा या कोनो मतभेद है विचार में तो सम्मान दे, ऐसा नहीं कि सम्मान दे छोड़ दे। देखा परिवार के बीच में जब कभी कोनो दिक्कत होए मन मुटाव रहे तो देखा संवाद हमेशा बनाए रखें,
1: हमेशा बनाए रखे चाहिए। और देखा हम सब सोचे थे कि खुशहाल परिवार बनाए बदे बहुत सारी चीज चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सच पूछा तो खुशहाल परिवार के नींव बहुत छोटी छोटी चीज से बना थे। जैसे देखा एक दूसरे के समय देव, बड़न के सम्मान करब, छोटन के प्यार देव, गलतियन के माफ करब, और सबसे जरूरी कि एक दूसरे के सुनब।
0: बिल्कुल
1: सही। कभी कभी का होता है कि समाधान ना चाहे हो है ना, कि बन मन ही आवत है एक घंटा तो कर एक सुनाई के चला जाते है, बस क्यों वैसन चाहिए होते जी चुपचाप ओकर बात सुन ले।
0: बिल्कुल सही। और देखा गंगा कहा जाता है ना कि कम अपेक्षाएं ज्यादा अपनापन परिवार में लाए खुशियन अनगिनत। तो देखा जब परिवार में जब खुशी की बात आवत थी तो बहुत सारे छोटे छोटे त्याग भी करे पड़े।
1: बिल्कुल करे के पड़े थे। देखा खाली परिवार जोन बा खाली चार दीवार के नाम न हो, परिवार वो एहसास है जहाँ हमारी सफलता पे सबसे पहले ताली बजत है और हमारे परेशानी में सबसे पहले क्यों हमारे हाथ पकड़त है।
0: बिल्कुल सही
1: है ना। तो देखा परिवार और रिश्ते में संवाद जैसे कहूँ वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो अपने परिवार के समय दे, खुशी के सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अपने परिवार के सम्मान दे, अपने परिवार के साथ दे।
0: और देखा गंगा तू कहू ना ये जो छोटी छोटी बात होते यही जो विश्वास होते है ना यही का, देखा छोटी छोटी जब भी मुसीबत होते तो हमेशा परिवार साथ रहते है और यही विश्वास के नाम का परिवार कहा जाता है।
1: बिल्कुल बहनी। तो देखा हम सब चर्चा कर रहे थे, चर्चा में आगे हुआ कि कल है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल
0: पूरे
1: हो जाए, है ना। तो देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे वित्त मंत्रालय ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। ठीक है, ई अभियान के

0: देश की प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाई और जनधन खाता के सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करब
1: बिल्कुल
0: तथा एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वित्तीय समावेशन के महत्व के रेखांकित
1: बिल्कुल
0: करब।
1: सही।
0: और देखा एमेजोन बा प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे बताए कि 28 अगस्त 2014 के शुरू किया गया। ई वर्ष अपने कार्यान्वयन के 12 वर्ष पूरा करत बा आपकी कल। ई महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहल देश के प्रत्येक परिवार के बैंकिंग सुविधा के सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध करावे, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा के बढ़ावा दे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है।
1: बिल्कुल सही दिखा।
0: और देखा पिछले 12 साल में ई योजना लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति किए बा, जैसे बैंकिंग सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच हो गया, ठीक बा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा सरकारी सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई हो गया, डिजिटल लेन देन और वित्तीय साक्षरता के बढ़ावा दे हो गया। तो एकर महत्वपूर्ण उपलब्ध एकर उद्देश्य जोन बा अभियान के कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पे एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जात बा। एक उद्देश्य बा प्रधानमंत्री जनधन के योजना के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जनधन खाते के सक्रिय उपयोग के प्रोत्साहित करब तथा एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वित्तीय समावेशन के महत्व के रेखांकित करब।
1: देखा गंगा, आज हमारे पनघटे पे कितनी अच्छी अच्छी बात भाई। और देखा आज अपने आप का भी लगा था कि बहनी हरन भी सुने हुई है, जिनका अच्छा लगा हुई। और देखा जब बात अच्छी अच्छी बात की होते तो कसना एक अच्छी सी गवनाई हो जाए।
0: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ चला सुना जाए कजरी प्रीति मिश्रा जी से,
1: चला सुना जाए।

0: गंगा
1: हाँ बनी
0: देखा कितनी अच्छी गौ नहीं रही, प्रीति मिश्रा बहनी कितने अच्छे से, मतलब देखा एक जो ने नंदी और ससुराल, और देखा मायके में एकदम छोटी छोटी सी बात कही, बहुत सुंदर आ। तो देखा जब अभी हम लोग बात कर रहे थे रक्षाबंधन की, तो देखा यही से जुड़ी कहानी भी है अपने रक्षा अपने पनघटे पे, और देखे उसका नाम भी रक्षाबंधन है कहानी के। तो चलो
1: अरे वाह,
0: सुना जाए, सुनाओ थे नीलम श्रीवास्तव बहनी।
1: चलो सुना जाए और भनियारन भी सुने।
2: जेकर नाम सुंदरगढ़ रहा, ओ गांव मा हर साल सावन का महीना आवत ही चारों तरफ हरियाली छाए जाए, मल्हार गावत भई मेहरारुन और झूला झूलत लड़िका लड़किन से पूरा गांव गूंज उठे। उहे गांव मा एक बुढ़िया माई रही, जेकर दुई संतान, एक तो बेटवा राघव और दूसर छोटी बिटिया सुगना रही। राघव सीधा साधा मेहनती किसान रहा और सुगना पूरे घर के दुलारी, चंचल और प्यारी सी बिटिया रही। दुइनों भाई बहन में बहुत प्रेम रहा। सावन के महीना शुरू भवा, सुगना के खुशी का ठिकाना न रहा। वो पहले से ही अपने भैया बदे रेशम का धागा लेके राखी तैयार करेंगी। उस समय बाजार मा ऐसन चमक दमक वाली राखी ना ही मिलत रहा। सुगना बहिनी अपने हाथ से लाल पियर धागा बटोरे, ओहमा सुनौला गोटा और थोड़े से अच्छत और मोती पिरोई के खूब सुंदर राखी भैया बदे तैयार कर लीहिन। इधर राघव भी बहिनी के लिए खेती बारी के काम से पैसा जुटाए, सुगना के लिए एक सुंदर सा लाल रंग का गोटादार चुनरी और चांदी के बिछिया खरीद लीहिन। पूर्णिमा के दिन आवा बिहान हुई, सुगना नहाए धोई के पीले रंग का घाघरा चुनरी पहिन मिट्टी के दिया

0: मामा रोरी चंदन अच्छत और घर से बना शुद्ध खोवा का मिठाई थाली मा सजाए लीन। राघव भी नहाय धोई के नया कुर्ता पैजामा पहन के पीढ़ा पर बैठ गवा। सुगना दौड़त भई आई, सबसे पहले भैया के मस्तक पर चंदन और रोरी का लंबा टीका लगाई, ऊपरे ऊपर अच्छत चिपकाए दीन। फिर बड़े प्रेम से भैया दाहिने हाथ के कलाई माँ ओही रेशम के धागा बांध दीन। राघव भावुक होई के बहनी के गले लगाए लीन और लाल चुनरी चांदी के बिछिया उनके हाथ माँ रख दीन। सिर पर हाथ रख के बोला, देख सुगना, ई सिर्फ एक राखी का धागा नहीं आए, ई हमार और तुहार जन्म जन्म का नाता है। जब तक मोरे प्राण माँ प्राण रही तब तक तोहरे ऊपर कौनो आँच नहीं आवे देव, ई मोर वचन है। समय बीतत गवा, सुगना का विवाह पास के ही एक गांव माँ होई गवा। वो अपने ससुरारी चली गई, राघव का घर तो सुना होई गवा, लेकिन वो हर साल सावन माँ सुगना के लिए आए जात रहा या सुगना खुदे राखी बांधे आवत रही। एक साल ऐसन भवा कि सावन के महीना माँ भयानक बाढ़ आई गई। सुंदरगढ़ और सुगना के गांव के बीच माँ बहे वाली नदी उफान पर आई गई, पानी चारों तरफ भर गवा, आवे जाए के रास्ता भी बंद हो गवा। ससुराल माँ भैया के इंतजार माँ सुगना रो रो के बेहाल रही। उस सोचत रही कि आज राखी के दिन आए, मोर भैया रास्ता जोहत हुई हैं, उनकर कलाई सोनी रह जाई। वो दिया जलाई के भगवान से प्रार्थना करे लगी। उधर अपने गांव में राघव व्याकुल रहे, कहे लगे गांव के लोग सब कहे लगे, राघव ये वक्त तो नहीं बा, नाव चलाना भी खतरा से खाली नहीं है, आज न जाओ। लेकिन राघव कहां माने वाला, बोले नहीं नहीं, मोर बहिनी मोर राह देखत हुई हैं, हम उनका वचन दिए है, मोरे हाथ में राखी बंधवाना जरूरी है। फिर तो राघव अपनी जान के परवाह न करके एक मजबूत लकड़ी के लट्ठा यानी तख्ता लिहिन और बाढ़ के पानी में कूद पड़े। वो नदी के तेज बहाव से लड़त झगड़त तैरत भवा भगवान के नाम लेके कौनो तरह से नदी पार कर लिहिन। पूरा शरीर तो थक चुका रहा, हाथ पैर माँ चोट आई गई, लेकिन उनकर हौसला नहीं टूटा। सांझ होए वाली रही, सुगना उदास मन से द्वार पर बैठ अपने भैया के लिए सोचत रही। तब है दूर से एक परछाई आवत दिखाई दी, पर जब नजदीक से देखिन तो भैया राघव कीचड़ माँ लथपथ भीगत भवा लड़खड़ात पैर से चला। भैया चिल्लात भई सुगना दौड़ पड़ी, भैया की ई हालत देख के आँखों से आंसू बहे लग, पर भैया मुस्कुराए के दोनों हाथ फैलाए के अपने बहिनी सुगना के गले से लगाए लिहिन और कहें, सुगना देख तोहार भैया आए गवा। अब राखी बांध सुगना रोवत हंसत भई भैया के पैर छुइन और भीतर घर मा ले गईं। चोट पर दवाई लगाई कपड़ा बदलाइन और कहीं, भैया थोड़ी देर आराम कर लियो, तब तक हम तोहरे खाए बदे कुछ बनाए दे। फिर का फिर सुगना भीतर गईन और फटाफट अपने किचन से खूब बढ़िया खाना बनाए के पूड़ी खीर पुलाव रायता सब बनाए चुनाई के ले आईन और भैया से प्रेम से बहनी के हाथ के खाना खाएन। बहनी से कहे लगे, अब तो हमें राखी बांध देओ, नहीं शुभ घड़ी निकल जाए। फिर सांझ के बेला शुभ मुहूर्त में थाली में दिया जलाई के अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, माथे पर चंदन का रोरी तिलक लगाई, मिठाई खियाई के आरती उतारी। भैया राघव भी अपने बैग से जौन ले आए रहन लहंगा चुनरी और एक जोड़ी बिछिया सब बहनी के हाथे में थमाए दीहिन। भाई बहन का ई प्रेम देख के आसपास गांव घर के लोग खूब सराहे लगे। रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नाही ना, सुख दुख माँ एक दूसरे के साथ निभावे के अपने कर्तव्य और वचन का पूरा करे करे सबसे पवित्र संकल्प है। रक्षा बंधन के त्योहार हर साल भाई बहन के मिलन और प्रेम के संदेश ले आवत है।
1: गंगा हाँ, देखा कितनी अच्छी कहानी रही सुगना के, और देखा कैसे जो उन्हें अपने भाई प्रेम माँ जो उन्हें कभो हंसे तो कभी रोए भी। हाँ देखा भाई प्रेम ऐसी चीजें होते कि असल में देखा अगर पास रहो तो थोड़ी नोकझोंक रहती, पर अगर ससुरारी रहो तो और ज्यादा
2: और ज्यादा

0: अलग है
1: हाँ, मैं अलग आती थी। देखा पास हुए तो देखा भाई लोगन से नोकझोंक होती, पर दूरी में तो
0: थोड़ी
1: इतना
0: देर
1: प्रेम
0: बाद
1: बढ़
0: लड़ाई
1: जाते।
0: हो इनके बाद लेकिन वो नोक झोंक वो लड़ाई देखा प्यार के प्रतीक है, वही वही भाई के लिए, मतलब दिल में हरदम ही रहा था कि ये सुखी रहा, ये खूब तरक्की करे,
1: बिल्कुल,
0: सब
1: बिल्कुल,
0: कुछ रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चला अब एक गीत ये पे सुन लिया जाए, छोटी बहन फिल्म से, लता मंगेशकर जी की आवाज में।
1: चला सुना जाए और बहनी लोगन भी सुने।

0: गंगा।
1: हाँ बहनी,
0: देखा गान गीत भी हुए हुआ रक्षाबंधन, मतलब आज पूरा हमारे पनघटे पे रक्षाबंधन छाए हुआ है।
1: छाए हुआ है कहाँ से कि देखा कल इतना बड़ा त्योहार है तो छाए तो एकदम बनत है।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा रक्षाबंधन आवत बा सावन जात बा, लेकिन हम सोचे कि आज अपने पनघटे पे सावन के पारंपरिक व्यंजन पे थोड़ा बात कर लिया जाए का।
0: बिल्कुल सही। और देखा रक्षाबंधन का त्योहार से जुड़ा हुआ सावन, अब देखा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के बाद से
1: हाँ
0: सावन भी खत्म हो जाते हैं, तो व्यंजन की बात होते और देखा रक्षाबंधन का त्योहार तो और से चका है। चलो
1: देखा सावन की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ पर पड़े झूले और हरियाली से सजी धरती, सावन के महीना अपने साथ खाली मौसम के ठंडक ही ना है बल्कि अपना आपन परंपरा और स्वाद के

0: मिठास भी लेके आवा था, है
1: हाँ
0: ना। आज हम बात करब सावन के उन सब पारंपरिक व्यंजन के जेके स्वाद हमार दादी नानी के रसोई, गांव की चौपाल और त्योहारन की याद से जुड़ा बा।
1: अरे वाह।
0: सावन औते देखा मन में सबसे पहले जोन तस्वीर उभरत है वह है आंगन में पड़ा झूला, झूले पे बैठी सखियां और दूर रसोई से आवत गरम गरम पकवान के खुशबू,
1: खुशबू
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: देखा सावन के व्यंजन के अपन अलगे पहचान होते हैं। कहीं पूरी और खीर बनत है तो कहीं घेवर बनत है, और कहीं मालपुए के मिठास घुलत है
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: कहीं कुट्टू या सिंघाड़े के आटे के पकवान व्रत की थाली में सजत है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन सावन के भोजन की खासियत सिर्फ स्वाद न है, एकरे पीछे मौसम, परंपरा और परिवार तीनों के सुंदर मेल है।
1: बिल्कुल सही गंगा। देखा हमार जोन सावन के जोन पारंपरिक जोन व्यंजन है वो देखा हमार जोन परंपरा है उसे जुड़े भए हैं। और देखा जब तू मालपुआ की बात कहो तो देखा ये आज का नहीं है,
0: हाँ
1: बहुत पुराना व्यंजन है और
0: बिल्कुल
1: अक्सर कुछ अच्छे अवसरन पे हम सब लोग इनका बनाई थी। और देखा
0: बिल्कुल।
1: एक बात और बताई तो का कि हमार जोन माँ रही वो कबो कबो जब बहन रक्षाबंधन होते ना
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: दिन गुलगुला भी छानत रही, इतना
0: हाँ
1: स्वादिष्ट लगत है
0: बहुत
1: गंगा की
0: अच्छा
1: माँ
0: लगा था
1: पूछो।
0: हमें, वो तो मतलब हमें इतना पसंद पर कि पूछा जी नहीं। और देखा इसमें पूरी और आलू की सब्जी है ना, मुंह में पानी आएगा।
1: बिल्कुल।
0: गरम तेल में फूलत भर सुनहरी सुनहरी पूरी और साथ में मसालेदार आलू की
1: आलू
0: सब्जी,
1: वाह वाह।
0: भला सावन की बरसात में इसे बढ़के देसी स्वाद और का होए, है
1: अरे
0: ना।
1: गंगा तू तो देखा एकदम ऐसा लगा था कि आज बस घर जाए के बस मन करी काका बनाई ली। और देखा गंगा जब बारिश की फुहार पड़ा थी तो
0: हाँ
1: देखा जब रसोई घर से बढ़िया से चाय की खुशबू और के साथ साथ गरम गरम प्याज और आलू के पकौड़े,
0: आहा,
1: आहा
0: मतलब
1: पानी
0: सोच के मुंह में पानी आ जाए।
1: आ
0: आज
1: जाते।
0: घरे जाए एक बार तो तुरंत ही बने कि पनघटे पे देखा चर्चा किए रहे हम सब,
1: बिल्कुल।
0: बने जरूर। देखा चटपटा और मीठा ये दोनों के जो मतलब
1: सम्मिलित
0: मिश्रण
1: होता है
0: बा,
1: मिश्रण है।
0: हाँ कि देखा चटपटा अपनी जगह अच्छा लगा था, वही मीठी चीज अपनी जगह अच्छा
1: बिल्कुल।
0: लगा
1: और
0: था,
1: देखा ये मौसम दोनों अच्छा लगा
0: दोनों
1: था।
0: अच्छा लगा था।
1: हाँ।
0: तो देखा खीर हो गया, दूध में धीरे धीरे जोन चावल पकत है ओकर भीनी खुशबू जोन होता है चीनी के मिठास, इलायची के खुशबू और ऊपर से कटे हुए मेवे,
1: दूरे से देखा महक
0: हाँ।
1: जाती
0: तो
1: कि आज खीर
0: देखा
1: बनती
0: खीर
1: रसोईया
0: खाली
1: में।
0: मिठाई ना बल्कि देखा भारतीय घरन के भावना के स्वाद है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही।
0: सावन और जो त्योहारन के अवसर पे खीर बनाई देखा अपने यहाँ शुभ माना जाता है कितना
1: हमेशा
0: ज्यादा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखा हर कहा जाए देखा कथा भी होती घरे में, कथा हो या कोनो अच्छा मौका हो तो खीर जरूर बनत है।
0: बिल्कुल। और देखा जालीदार बनावट वाला सुनहरा घेवर, ऊपर से मलाई और रबड़ी के परत, मेवे के
1: बस
0: सजावट,
1: आज बस गंगा बस आप तो बस लगाते कि रसोईया चल
0: बिल्कुल
1: चली।
0: सावन और तीज के अवसर पे घेवर की मिठास देखते बनत है। और घेवर के साथे याद आवत है मालपुआ, है ना। जैसे तो कहूँ भाई, मैदा दूध और चीनी से तैयार मालपुए के घी में सेक के जब चाशनी में डुबोया जाते ना तो ओके खुशबू जोन में पूरे घर में फैल
1: घर में
0: जाते हैं,
1: फैल जाते
0: और कई
1: बिल्कुल।
0: जगह एक रबड़ी के साथे परोसा जाता है ना। यानी सावन में मौसम भले ही ठंडा हो लेकिन रसोई में स्वाद के गर्माहट बनी
1: बनी रहा
0: रहता
1: था बिल्कुल सही गंगा। देखा कितना कुछ बताओ तू तो। अब
0: है।
1: को छूटा है का?
0: अरे बिल्कुल, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूटा है
1: अरे
0: कि
1: उनका।
0: व्रत और सात्विक भोजन। सावन के देखा सोमवार में बहुत लोग व्रत रखते हैं, ऐसे समय में अनाज की जगह सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से पकवान बनावा जाता है। जैसे कुट्टू के पूरी हो गया, सिंघाड़े के आटे की रोटी हो गया,
1: बिल्कुल।
0: दही और आलू हो गया, इनसे बनी व्रत की थाली सरल होते हुए भी स्वादिष्ट होते हैं।
1: बिल्कुल। और गंगा ये जो थाली सात्विक थाली जब सामने आई जाती ना कभो कभो तो सही बताई थी हमार मन में तो ऐसे होते कि जो वही जो पूड़ी और आलू वाली है थालियों का किनारे करके
0: देखा
1: पहले एक का स्वाद ले लिया
0: जे
1: जाए।
0: व्रत रहा थे ओका तो अच्छा लगबे करे थे, घरे में जे जे व्रत ना है वो कहते हमहू ही एक हम व्रत
1: बिल्कुल।
0: रहा तो देखा कितना बढ़िया बढ़िया, जैसे तो बताओ आप, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े और अदरक वाली चाय, और खिड़की के बाहर बारिश होत रहे,
1: बस
0: मतलब जिंदगी में ऐसे बड़ा सुख तो कुछ हो ही ना सकता
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो देखा वो कहा था कि दादी के हाथ के खीर और माई के बनाई पूरी, सावन में बहनिन के लिए बनाया गया घेवर और तीज पे तैयार होए वाला मालपुआ, इन पकवानन के साथ हमारे त्योहार, रिश्ते और बचपन के मतलब यादें जुड़ी होती।

0: आज के देखा तेज रफ्तार जिंदगी में बहनी जब बहुत सी चीजें बदलत हैं, तभी पारंपरिक स्वाद की अगली पीढ़ी तक पहुंचाई भी हमारे सबके जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल सही है ना? और देखा सही बात है, आज जो हमारे रसोईया घर में बनी वो मार कल के हमारे गदीलन भी याद रखिये, बच्चन भी याद रखिये कि देखा वो रसोई घर से तो हम ई खात रहे, हमारी अम्माई बहुत स्वादिष्ट बनावत रही।
0: बिल्कुल, तो कहे ना ये सावन एक दिन मोबाइल और भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकाल के घर में करोड़ों पारंपरिक पकवान बनावा जाए और दादी से होके विधि पूछी जाए, माई के साथ रसोई में हाथ बटावा जाए।

0: और भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकाल के घर में करोड़ों पारंपरिक पकवान बनावा जाए और दादी से होके विधि पूछी जाए, माई के साथे रसोई में हाथ बटावा जाए और बच्चन के बतावा जाए कि कोनो भी व्यंजन के पीछे खाली सामग्री ना है बल्कि हमार संस्कृति के भी कहानी होते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: है ना। तो भैया बहनी हरन, ये सावन जब बारिश की बूंद आपकी खिड़की पे दस्तक दे तो याद रखिए कि सावन केवल हरियाली के मौसम ना है, स्वाद उत्सव और अपनत्व के भी मौसम है।
1: बिल्कुल सही। और गंगा देखा कितना अच्छा, तो बताओ अब एक के साथ साथ चला तो कहीं अच्छा सा रक्षाबंधन के गीत सुनाई थी और आवाज़ है सुमन कल्याणपुरी जी की, तो चला सुना
0: रेशम की डोरी फिल्म से, चला सुना जाए।

0: हंसी दोनों की एक तरह से आई।
1: देखा
0: गाना कितना सुंदर रहा, भाई बहन के रिश्ते में जो प्यार भरा जो संदेश हो ही सकते थे, इसे अच्छा और का हो सकता।
1: बिल्कुल वो एहसास जोन होते ना कि मतलब भाई बहन के प्यार जोन पर एकदम कितना पवित्र, कितना मतलब आंख भरी है। जिकर भाई दूर रहा थे, जिकर नजदीक है ना, कहते कौन बात ना है ना, लेकिन हमारे भाई भी थोड़ा दूर रहा था इसलिए थोड़ा हम
0: देखा गंगा प्यार बना रहे ज्यादा अहमियत रखते ना।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा अब जो है पनघटे पे कितनी प्यारी प्यारी बातें भाई, इतने सुंदर सुंदर गीत हुए। अब चला कसना ईमेल संदेश है, चला सुन लिया जाए।
1: चला सुना जाए।
2: होता है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
0: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAME@gmail.com। पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
0: गंगा।
1: हाँ बहनी।
0: देखा संदेश भी सुन लिया हुआ।
1: हाँ।
0: देखा जब रक्षाबंधन की बात होता है तो एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है।
1: हाँ।
0: और देखा कहानी है कि एक भाई अपनी बहन से दूर शहर में रहता है, तो देखा रक्षाबंधन पर वो घर नहीं आ सके, तो बहन उनका डाक के द्वारा राखी भेज दीन।
1: अच्छा।
0: तो भाई जब राखी हाथ में बांधिन तो ओके बाद वो अपनी बहनी का फोन करिन। और फोन करके कहिन, देखा बहन दूरी चाहे कितनी भी हो, तुम्हार हर परेशानी में हम तुम्हारे साथ खड़े रहा। देखा बहन मुस्कुराई और कही, देखा भाई ऐसे महंगा तोहफा हमका कुछ ना चाहिए।
1: कुछ ना चाहिए ना? सबसे तो, महंगा तोहफा तो ये
0: है कि जब भाई साथ
1: बना रहे, ये सबसे महंगा तोहफा होते बहनिन के लिए। तो जया बहनी, ये बतावा कि रक्षाबंधन की तैयारी की हो कि ना आया भाई?
0: देखा सब तैयारी हो गई है गंगा बहनी, बस जाए की देर है।
1: बस जाए की देर है। तो यहाँ से जाए कि तब जाबू कि बिहान सवेरे जाबू?
0: नहीं देखा आप कल सुबह वा जाब। हाँ। कल सुबह आज तैयारी सब कर ली है,
1: मिठाई
0: ले ली है। और देखा जब एक लड़की जब ससुराल और मायके से दोनों की जिम्मेदारी होते जेके ऊपर।
1: हाँ।
0: तो देखा पहले होकर अपन ससुराल भी देखे पड़ा थे ओके बाद, तो देखा आज अपने ससुराल की सारी तैयारी कर और फिर कल अपने मायके जाओ।
1: अरे बिल्कुल। देखा हम वो तैयारी कर दिए, थोड़ा बहुत बच्चा बाटे तो यहीं से जाए के बाद निपटाए ले। तो देखा कल है रक्षाबंधन, अपने पनघटे के सब सखियन की तरफ से और आकाशवाणी प्रयागराज के पूरे परिवार की तरफ से सब भैया बहनी हरेन के रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिखा रक्षाबंधन सबकर अच्छा बीते, सबकर बहुत खुशी वाला बीते, यह कामना बा। देखा पनघट पे आए के एकदम मतलब बात करत रहा बती ही ना खत्म होते
0: है ना, राम राम करे की बेला होती।
1: तो बहनी हरन से बतियात देखा होएगे समय घरे चले के। तो चला बहनी हरन से राम राम किया जाए। राम राम,
0: राम बहनी हरन।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अंग्रेजी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
0: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी.
0: The Prime Minister expressed happiness that today sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. He said this Khelo India Samvad is not merely a program for discussing sports, but it is a platform for dialogue where every single idea can give a new direction to the nation's sports vision.
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी

0: in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century, addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extends their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों

0: तक आपने फिटनेस को, लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित आईआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851318 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री

0: डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इंपैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे।

है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।

0: अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रही हैं आप?
1: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिनराम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ?
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
1: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिनराम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
1: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
0: जी जी। तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं, तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
1: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
1: जी,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
0: जी।
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादो यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिनराम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते
1: जी।
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिनराम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिनराम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिनराम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर

0: 8800-44-0559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नानाजी, नानाजी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नानाजी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।

0: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
1: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
1: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
0: ओ।
2: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
0: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
0: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
0: ओ।
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
0: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
1: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
12: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण

0: और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
1: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
0: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी

0: में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, हम आपको बता दें विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।

0: 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लापता। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सन लाइफ फाइनेंशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। इस बंदरगाह ने इस वर्ष की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की, और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूं।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर्स।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. इस शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि. अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं. लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूं, सूत्रधार हूं. 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है. जो भी आप महसूस करते हैं ज़रूर लिखिएगा. युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ाई दिखाते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है. कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है. और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं.

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश, जो जो बहनें हैं, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर को कोनूर कोकानूरू कोकानूर एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा. शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावानागरे से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरोला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि. सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल, जैसे बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती है। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं, और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेज स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेजेस का यहाँ है वो आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की, और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि इन्होंने, यश सिंधे ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो, अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारा शो है। सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले, बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली के इस गाने के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रविंद्र जैन।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शिव हरी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है।

0: क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता सुनिए अपना कार्यक्रम युववाणी।

मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए, मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखिए तो आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। हेलो दोस्तों, तो भाई एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट इवनिंग शो युवाणी, जहाँ आज मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सेजल। तो की हालचाल, उम्मीद है कि दिन भर की भाग दौड़, काम, पढ़ाई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच थोड़ा सा वक्त मिला होगा खुद के लिए, अपनों के लिए और शायद थोड़ी सी मस्ती के लिए भी। और सच कहूँ तो शाम होती ही कुछ ऐसी है, दिन की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, सूरज भी अपने शिफ्ट्स खत्म कर रहा होता है, हवा में भी थोड़ी ठंडक घुलने लगती है और हमारा मन भी कहता है जस्ट रिलैक्स। और पता है इन सब के बीच हमें एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि आज है 27 अगस्त, यानी कि अगस्त भी बस अपने कुछ लास्ट डेज गिन रहा है और कुछ ही दिनों बाद कैलेंडर सितंबर कह रहा होगा। वैसे अभी तो लग रहा था कि अगस्त शुरू ही हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। ये टाइम भी ना नोटिफिकेशंस की तरह होता है, मतलब आता है और कब चला जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और हम भी तो कमाल करते हैं ना, टाइम के साथ भागते रहते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है अरे ये सब कब हो गया। वैसे भी दोस्तों हर चीज़ परफेक्टली प्लान्ड नहीं होती है और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कोई रैंडम सा अनएक्सपेक्टेडली दिन अच्छा निकल जाता है, तो कभी किसी की बातों से मूड अच्छा हो जाता है और कभी तो कोई अच्छा गाना सुन लिया तो लगता है कि हाँ आज का दिन इतना भी ख़राब नहीं था। और क्योंकि दिन के किसी ना किसी हिस्से में एक शख्स भी होता है जिसने बिना कुछ खास किए उसे थोड़ा और बेहतर बना देता है, शायद कोई ऐसा जिसके साथ बात शुरू करने के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ती और बताओ से कन्वर्सेशन शुरू होती है और कब एक घंटा हो जाता है बात करते करते बिल्कुल पता नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्तों की, वो दोस्त जिसके सामने हम अपने सबसे अनफिल्टर्ड वर्जन में होते हैं, जहाँ ना कोई फॉर्मेलिटीज़ होती है ना ही ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलूँ, क्योंकि इसमें कोई रूल्स ही नहीं होते हैं। और शायद यही चीज़ फ्रेंडशिप को बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग बनाती है। और वैसे भी दोस्ती भी ना बड़ी अजीब चीज़ है, मतलब कभी एकदम रैंडम से मुलाकात से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वही रैंडम इंसान हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडशिप ना कैलेंडर के पेजेस के साथ चेंज नहीं होती, वक्त बदलता है, लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं या फिर लाइफ का सीन भी बदल जाए, पर उनके साथ वाली बॉन्डिंग वही सेम टू सेम रहती है। बट आज के मॉडर्न टाइम में या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया के ज़माने में फ्रेंडशिप भी थोड़ी अपग्रेड हो गई है, रील्स में साथ, स्टोरीज में टैग्स हो, पिक्चर्स में मैचिंग पोजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों आज जब बात दोस्ती की हो रही है तो चलिए आज दोस्ती को एक नए एंगल से देखते हैं, यानी रियल लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं और रियल लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज, कहाँ दोनों की दोस्ती एक जैसी लगती है और कहाँ एक छोटा सा फ़र्क पूरी कहानी बदल देता है। इसी पर करेंगे आज थोड़ी सी दिलचस्प चर्चा, लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक यू टर्न।

सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रील लाइफ और रियल लाइफ फ्रेंड्स के बारे में। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि आज हमारे पास लोगों से जुड़े रहने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ रिश्तों में पहले जैसी वॉर्म्थ क्यों नहीं रहती? शायद इसीलिए क्योंकि कनेक्टेड रहना और कनेक्टेड होना दो अलग बातें हैं, और दोस्ती इन दोनों के बीच का सबसे खूबसूरत फ़र्क है। आज डिजिटल वर्ल्ड में तरीका बदल चुका है, बट द कनेक्शन इज सेम। और बस यही छोटी सी लाइन पूरी बात को समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि समय बदल गया है।

है पर उनसे जुड़े रहने की फीलिंग तो वैसी ही है। और आज फ्रेंडशिप सिर्फ पास बैठने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, कभी कभी किसी की छोटी सी कन्वर्सेशन से कनेक्शन बन जाता है, या फिर कभी किसी कॉमन इंटरेस्ट से, या हमारी वाइब्स किसी से मैच हो जाए, और कभी वो स्ट्रेंजर से कब हमारा फ्रेंड बन जाता है पता ही नहीं चलता। और यही तो है रियल लाइफ फ्रेंडशिप, जो आज बहुत कॉमन सा है। इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करती, आप कितने दूर हैं, किस सिटी में हैं, कितनी बार मिलते हैं, ये सब चीज़ें कनेक्शन की डेप्थ नहीं तय करती, क्योंकि वो दोस्त कितना भी दूर क्यों ना हो, इफ़ ही और शी इज़ एन आर अप्स एंड डाउन्स, दैट मीन्स यू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंडशिप तो वो कनेक्शन है जहाँ सामने वाला सिर्फ सुनता ही नहीं, समझने की कोशिश भी करता है। दोस्ती कहीं से भी शुरू हो, उसे बनाए रखने के लिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे स्क्रीन के इस पार हो या फिर उस पार। और यही तो वो पॉइंट है जहाँ रियल लाइफ फ्रेंडशिप हमें रियल लाइफ फ्रेंडशिप की तरफ ले जाती है, क्योंकि असल में दोस्ती की जगह बदल सकती है, उसका तरीका बदल सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरतें नहीं बदलती। हर किसी को आज भी एक ऐसा पर्सन चाहिए जिससे वो अपनी हर बातें शेयर कर सके, अपनी खुशियाँ बांट सके, और कभी कभी बिना कुछ कहे ही समझा जा सके, जिसका मतलब है। और अब हम बात करते हैं रियल लाइफ फ्रेंडशिप की। तो रियल लाइफ फ्रेंडशिप का मतलब होता है प्रेजेंस, ऐसी प्रेजेंस जो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी महसूस हो। रियल लाइफ में दोस्ती सिर्फ घूमने और रोज़ मिलने का नाम नहीं है, ये उस कंफर्ट का नाम है जिसके साथ सिर्फ अच्छे मोमेंट्स ही नहीं होते, वहाँ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट रिस्पेक्ट एंड केयर वही होती है। और शायद एक सच्चे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी अच्छी तस्वीरों का हिस्सा नहीं होता, इतना ही नहीं वो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इम्परफेक्शन सब जानता हो, जिसके सामने हमेशा सॉर्टेड दिखना ज़रूरी नहीं होता। हम अक्सर दोस्ती को छोटी छोटी चीज़ों से मेजर करने लगते हैं ना, कि कितनी बार बात हुई, कि हम कितनी बार मिले, कितनी जल्दी हमें रिप्लाइज मिला, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सच में यही दोस्ती के मायने हैं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हर दिन की कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा ज़रूरी है वो ट्रस्ट कि जब भी बात होगी तो मुझे वही अपनापन मिलेगा। क्योंकि डिस्टेंस दोस्ती को कमज़ोर नहीं करती अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। और हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ फ्रेंडशिप एक दूसरे से बहुत अलग भी नहीं लगती। रियल लाइफ हमें कनेक्ट करती है तो वहीं रियल लाइफ उस कनेक्शन को डेप्थ देती है, लेकिन दोनों के बीच एक ब्रिज है, जेन्युइन एफर्ट। यानी अगर किसी रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उसके लिए थोड़ा समय निकालना भी जाता है, थोड़ा समझा भी जाता है। और दोस्त यही तो खूबसूरती है इस परफेक्शन की, इसमें परफेक्शन की नीड नहीं होती है। दो अलग अलग हो सकते हैं, दो अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, पसंद अलग अलग हो सकती है, फिर भी दोस्ती तो वही रहती है। क्योंकि फ्रेंडशिप में एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स शुड बी लाइक मिरर्स एंड शेडोज, बिकॉज मिरर्स नेवर लाई एंड शेडोज नेवर लीव यू। और दोस्तों इट डजेंट मैटर कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने सारे फ्रेंड्स हैं, मैटर ये करता है कि एक सच्चा दोस्त आपकी खुशी को कॉम्पिटिशन नहीं बनाता, आपके अचीवमेंट्स में अनकम्फर्टेबल नहीं होता, आपकी प्रिवेसी को एंटरटेनमेंट नहीं बनाता है। और शायद इसी वजह से दोस्ती हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मे बी उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, बट ही और शी नेवर लीव्स यू अलोन इन दैट प्रॉब्लम। वो कभी आपकी मोटिवेशन बनते हैं तो कभी रियलिटी चेक, कभी हंसने की वजह और कभी एक लिसनर। इसीलिए रियल लाइफ फ्रेंडशिप को फेक और रियल लाइफ फ्रेंडशिप को ऑटोमेटिकली जेन्युइन मान लेना भी सही नहीं है, क्योंकि रियलनेस जगह से नहीं आती है, इंटेंशन से आती है। लेकिन आज के समय में हम जो सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं वो है क्वालिटी टाइम। हम कनेक्टेड तो बहुत हैं लेकिन कई बार जेन्युइनली प्रेजेंट नहीं होते, बातचीत होती है लेकिन सुनना कम होता है, साथ होते हैं पर ध्यान तो कहीं और होता है। इसीलिए शायद फ्रेंडशिप को आज किसी बड़े जेस्चर्स की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी जेन्युइन प्रेजेंस की ज़रूरत है, कभी समय देना, कभी सामने वाले की बातें को बिना इंटरप्ट किए सुनना, कभी उसकी खुशी के लिए कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना। एज फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग समवन स्टेज, इट्स अबाउट हाउ रियल द कनेक्शन फील्स वाइल दे आर देयर। तो दोस्तों रियल हो या रियल लाइफ, दोस्ती को किसी एक डेफिनेशन में बांधना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ हर ट्रेंड में नहीं हर फेज में रह रहा है, तो कीप देम क्लोज, क्योंकि ऐसे लोग रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। तो साथ

दोस्ती तो आम है, लेकिन ए दोस्त, दोस्त तो मिलता है बड़ी मुश्किल से। तो अपने उस मुश्किल से मिले दोस्त को थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि लोग तो बहुत मिलेंगे लेकिन हर कोई दोस्त नहीं बन पाएगा।

0: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को
2: निवेदन है, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
8: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
7: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
8: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
9: और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जहां हर दिन कुछ नया आपका इंतजार करता है। और आज इस सेगमेंट में मैं लेकर आई हूं एक कहानी, तो चलिए सुनते हैं ओमजा सिंह की कहानी।
10: नमस्कार, मेरा नाम है ओमजा सिंह और आज हम कहानियों की चर्चा करेंगे। हम सब कहानियों से बने हैं और हम सब में अनेक कहानियाँ हैं। हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु की अपनी कहानी है। तो बात यदि कहानियों की शुरू हो ही गई है तो बात किताब की भी क्यों ना कर लें। किताब की कहानी की क्या बात है, पूछो किताबों से तो कुछ गुनगुनाती हैं। किताब की धूल से भी खुशबू कुछ यूं आती है, बुजुर्ग किताब अनंत किस्से सुनाती है। सुनो, क्या तुम्हें भी किताब बुलाती है? नई किताब में सपने हजार हैं, बच्चे की कक्षा कल है, पर किताब तो अभी से तैयार है। सुनो जरा, क्या किताब की आवाज़ है, किताब की कहानी की क्या बात है, किताब की कहानी की क्या बात है। मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ वो शायद कोई ऐसी गहन कहानी नहीं है जो आपको विचार में डाल दे, शायद या आपको विचार से मुक्त कर कुछ क्षणों के लिए आपको आपके बाल्यकाल, आपके बचपन में ले जाए। कॉपी किताब की दुकानों में जो किताबें और कॉपियों की सुगंध होती है वह एक नवजीवन की सुगंध होती है। कितने ही बच्चों ने वहाँ से पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, रंग इत्यादि जाने क्या क्या अपने जीवन के न जाने कितने सपने पूरे करने के लिए खरीदे होंगे। कितने माँ बाप अपने बच्चों को पहले दिन स्कूल भेजने का सपना लिए वहाँ जाते होंगे। तो यही स्टेशनरी की दुकान होती है जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियाँ लिए चली आ रही हैं। यह दुकानें छोटी रही होंगी चाहे बड़ी, बच्चों की आँखों से देखिए या आँखों में बचपना ला कर देखिए, देखिएगा ज़रूर। अच्छा, मोहल्ले की एक बहुत पुरानी किताब की ऐसी ही दुकान है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहानी में एक मुख्य पात्र हैं जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और एक दादा हैं। तो कहानी यूँ है कि दुकान तो इतनी पुरानी है कि शायद मोहल्ले के अंकल आंटी लोग भी अपने बचपन में

विद्यालय की कॉपी किताबें यहीं से ले जाते होंगे। ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर हर सामान मिल ही जाता है। स्कूल के प्रोजेक्ट के सामान से लेके कॉलेज के असाइनमेंट तक का हर सामान, A to Z सब कुछ मिल जाता है। ईंट की दीवार है जिसपे कुछ जगह प्लास्टर है और कुछ जगह ईंट अभी दिख रही है, पर कुछ भी कहो, दुकान में घर जैसा कुछ तो है। यह दुकान एक बूढ़े दादा की है। कद में मध्यम कद के हैं, चेहरे में गुस्सा, स्वाभिमान, शांति और बालपन सब झलकता है। बाल थोड़े सफेद हैं, दादा की उम्र हो गई है, पर फिर भी बच्चे से लगते हैं। अब कैसे लगते हैं पता नहीं, बस लगते हैं। उनके क्या ही कहने, अक्सर जब भी देखो किताब पढ़ते या बेचते ही दिखते हैं। खाली बैठे तो शायद उन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरे लिए तो वह दादा है, पर सोचता हूँ तो समझ आता है कि वह भी कभी बेटा थे, फिर भैया हुए, फिर अंकल जी, फिर अब दादा। इंसान का नाम तो नहीं बदलता, पर ये संबोधन के शब्द बदलते रहते हैं, और नाम से ज़्यादा ये वही इंसान है। खैर, अब दादा की बात करते हैं। समय के सफ़र के दौरान दादा ने कितने ही स्टेशन देखे होंगे। दादा अगर किताब होते तो अपनी दुकान की पुरातन कहानियों की या इतिहास की किताबों के संग्रह की एक सुंदर किताब अवश्य होते हैं। वैसे हम लोग उन्हें किताब वाले दादा भी कहते हैं, और किताब वाले दादा कहते हैं कि सामान तो मेरे समय का हुआ करता था। देखो, इसी मेज पर कभी मैंने इस दुकान की शुरुआत की थी। जेब में पैसे कम हुआ करते थे। यह मेज इस दुकान की पहली नींव है, मेरा पहला साथी। गिनती की कुल 10 किताबें लाया होगा, वह बिक गई तो 20 किताबें लाया, वह भी बिक गई। तब तो मैं समझ गया कि भाई दुकान तो अब चल पड़ी है। तब से आज का दिन है कि इतनी किताबें इस दुकान में है कि उसकी गिनती के लिए एक किताब लानी पड़ी है। मेरे जितना बूढ़ा तो मेरा यह मेज भी होगा। हाँ, एक दो बार इसकी थोड़ी मरम्मत की जरूरत जरूर पड़ी है, लेकिन ये आज भी मेरे दुकान के साथ पूरी पार्टनरशिप में है। इसी मेज पर बैठे बैठे मुझे यह पता ही नहीं चला कि ये समय पता नहीं कब बीत गया। किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था मैं, लेकिन जेब ने धोखा दे दिया। परिवार की मजबूरियों ने हाथ में से किताब छीन ली, पर मैं भी बड़ा जिद्दी था। सोचा, किताब तो छोड़ूंगा नहीं, कलम भी अब हाथ में उठा ही ली है, तो इन्हें भी अब क्यों छोड़ूं? तो क्यों ना अपना भविष्य लिखने की जगह कलम को ही अपना भविष्य बना लूं और दूसरों को अपना भविष्य लिखते देखूं। सच कहूंगा, शुरू शुरू में लगता था कि काश दुकान के इस तरफ नहीं, दुकान के उस तरफ होता मैं, दुकान पर मैं आया होता, काश मैं विद्यालय जा रहा होता, काश की ये किताब मैं अपनी कक्षा के लिए ले रहा होता, काश की ये खाली कॉपी मैं खरीद रहा होता। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ सामान्य सा लगने लगा। मैं अपने आसपास देखा तो देखा कि मैं तो यही चाहता था कि मैं किताबों के एक ढेर में बस बैठा रहूं, तो मैं वहीं तो हूँ, इसमें क्या बुरा है? दिन भर किताबों के इर्द गिर्द रहना ही तो मेरा स्वप्न था। किताबें पढ़ता रहता हूँ और बेचता भी हूँ, कुछ पैसे भी आते हैं और मज़ा तो खूब आता है। ये कहकर दादा दुकान समेटने लगे, पर आज दादा की मुस्कुराहट कुछ अलग थी। ऐसा लगा मानो आंसुओं को बहने से मना करते करते उन्हें हंसी आ रही हो। दादा को देखकर हम सब ने पूछा कि दादा, कल दुकान कितने बजे खुलेगी? कुछ कलम, कुछ कॉपी, किताब आदि लेनी है, पर मैं लिस्ट घर पर भूल आया हूँ, तो कल आके ले लेंगे। दादा ने कहा कि बेटा, कल शायद दुकान न खुले। तो हमने कहा, तो परसों आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं पूरी बात बोल भी नहीं पाया कि दादा ने बोला, मेरा मतलब था कि बेटा शायद कल से दुकान ना खुले। जो सुना उस पर विश्वास कर पाना कठिन था, पर फिर भी पूछना तो जरूरी था कि ऐसा क्यों। दादा को कोई कारण खुद भी शायद पता न था। शायद दादा अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहते थे कि वह थक चुके हैं, क्योंकि उन्हें कभी थका हुआ तो किसी ने नहीं देखा था। तो शायद वह यही चाहते थे उनके जानने वाले या जान ही न सके कि इस व्यक्ति में थकने का भी कोई सिस्टम है भी कि नहीं। तो मैं भी कुछ और पूछ न सका। रास्ते में सोचते सोचते कि कुछ दिन पहले दादा से मैंने शायद एक कलम ली थी जिसमें मैंने 2-4 रुपए कम करवाए थे, वो सही था या नहीं था। खैर, सोचते सोचते घर आ गए। रात में नींद तो आ नहीं रही थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, कल जाके देख लेंगे, शायद दादा फैसला बदल दें। काश कि ऐसा हो जाए, या हो सकता है अपनी बरसों पुरानी आदत के चलते दुकान खोलने के समय खुद ही आ जाएं।

0: उत्सुकता में सुबह सुबह थोड़ा जल्दी ही नहा धोकर दादा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा कि शायद दादा आ जाए, शायद दादा आ जाए। मन तो मनाता रहा, शायद यह दादा का कोई मजाक हो, काश मजाक ही हो। दादा की दुकान का बंद दरवाज़ा शायद आज पहली बार देखा था, और देखते देखते मैंने देखा कि दादा आ रहे हैं। और यह देखकर मैं कुछ कह न सका, पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, और शायद दादा को मेरी सवाल सूची के बारे में पता था। दादा मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। दादा ने जल्दी से दुकान का शटर खोला और कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए, बेटा बताओ लिस्ट लाए हो कि नहीं, नहीं आज भी भूल गए। मैंने कहा, दादा लेकिन दादा आप तो। मेरी बात बीच में काटते ही दादा ने कहा कि कल की बात कल की, कल पर ही छोड़ दो। अपने दोस्त को भी कोई भूलता है क्या? ये बताओ क्या है कि ये दुकान, ये किताबें मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। बुलाने लगे मुझे तो मुझे आना पड़ा, अब क्या करूँ। कभी छुट्टी का दिल करेगा तो वो भी कर लेंगे, इसमें क्या है। ये दिल की और दिमाग की बात है, और दिक्कत यह है कि दोनों सही है और दोनों गलत है। तो मैं तो यही मानता हूँ ये पल पल की बात है। अभी की कहानी है जिंदगी, कल तो बीत गया, आने वाला कल क्या है किसे मालूम। किताब का यही पन्ना अभी पढ़ना है जो सामने खुला है। बस करो अब ये सब बात, बस करो, चलो जल्दी से लिस्ट दिखाओ क्या क्या लेना है। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, बच्चे आ जाएंगे, तो ये मत कहना बिल्कुल कि क्या दादा देर हो रही है, मेरा सामान पहले दो। बस कहानी बस यही थी। शायद आप सब कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ पाए होंगे। हम सब की कॉलोनी में, मोहल्ले में, घर के आसपास कोई तो ऐसी स्टेशनरी की पुरानी दुकान अवश्य होगी। खैर इसी कहानी को रखते हुए मैं आप सबको सहृदय नमस्कार करना चाहती हूँ, धन्यवाद।
1: तो दोस्तों अभी आपने सुनी कहानी ओमजा सिंह की। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। कहा जाता है कि किसी काम को करने की काबिलियत किसी जेंडर की उससे ज़रूरत नहीं होती है। महिलाओं ने भी हर दौर में ये साबित किया कि जहाँ हिम्मत हो वहाँ रास्ता अपने आप बनता है। और हमारे इतिहास में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ अपने घर को ही नहीं संभाला, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सत्ता और युद्ध के मैदान में भी अपनी पहचान बनाई है। और उनमें से एक नाम है रानी वेलु नाचियार। अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के दौर में उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए संघर्ष किया। तो आज की प्रेरणा से पुंज सेगमेंट में हम जानेंगे रानी वेलु नाचियार के बारे में, उनके जीवन से लेकर उनके संघर्ष तक, और ये भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इतिहास में कि उन्होंने बस उस दौर में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वेलु नाचियार का जन्म 1730 में तमिलनाडु में एक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी परवरिश कुछ अलग तरीके से हुई। उन्हें सिर्फ राजमहल की परंपराएं नहीं दिखाई गईं, बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल की भी शिक्षा मिली। यानी बचपन से ही उनमें वो आत्मविश्वास तैयार किया जा रहा था कि जिसकी ज़रूरत आगे चलकर पड़ने वाली थी। उन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था। पर अब दोस्तों अब ज़रा उस समय को समझिए जब ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग हिस्से पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, और यही चीज़ वो साउथ इंडिया में भी हो रहा था। और इसी दौर में वेलु नाचियार का विवाह शिवगंगा के राजा से हुआ। यहीं से उनके जीवन का एक नया मोड़ आया। साल 1772 में उनके पति पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उन पर सारी जिम्मेदारी आ गई उस राज्य की। और ऐसे समय में टूटना तो बहुत आसान था, पर उन्होंने हार नहीं मानी, और यहीं से एक रानी की कहानी बदलने लगी। वो अपनी बेटी विल्लाची के साथ एक सुरक्षित जगह पर चली गई, जहाँ उन्होंने कई साल बिताए। लेकिन ये साल इंतज़ार के नहीं, उनकी युद्ध नीतियों की तैयारी के थे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, सहयोगियों को जुटाया, और मैसूर के शासक हैदर अली की भी सहायता ली। रानी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने महिलाओं को भी अपने संघर्ष में संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को केवल दर्शक बनाकर नहीं रखा, और यही तो नारी शक्ति है कि सिर्फ ये कहना कि महिलाएं किसी से कम नहीं, काफ़ी नहीं है, उन्हें अवसर देना है, उन्हें निर्णय लेने की जगह भी देना उतना ही ज़रूरी है। और फिर कई सालों की तैयारियों के बाद वेलु नाचियार ने शिवगंगा को वापस पाने के लिए अभियान शुरू किया। लगभग 1780 के आसपास ऐसा माना जाता है कि कुइली वेलु नाचियार की महिला सेना की प्रमुख सेना नायिका थी। जब अंग्रेज़ों और रानी वेलु नाचियार के बीच युद्ध हो रहा था, तो रानी के गुप्तचरों ने अंग्रेज़ों के गोला बारूद का पता लगाकर उसे नष्ट करने का निर्णय किया।

तब कुइली ने अपने कपड़ों पर घी का लेप लगाकर और अपने आप को आग में आग लगाकर अंग्रेजों के उस शस्त्रागार में चली गई थी। इससे अंग्रेजों के युद्ध की सारी सामग्री नष्ट हो गई और फिर रानी ने अपना राज्य को अंग्रेजों से बचा लिया। सोचिए, जिस राज्य से उन्हें कभी बाहर जाना पड़ा था वो उसी राज्य में वापस लौटी। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको पीछे धकेलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब खत्म हो चुका हो। और जब भी हम किसी योद्धा के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर तलवार, युद्ध और

आपको पीछे धकेलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब खत्म हो चुका हो। और जब भी हम किसी योद्धा के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर तलवार, युद्ध और जीत की तस्वीरें ही आती हैं, लेकिन किसी बड़ी जीत के लिए सिर्फ रणनीति, धैर्य और सही समय का इंतज़ार भी करना चाहिए। और रानी वेलु नाचियार के जीवन में हमने यही देखा, और शायद इसी वजह से उनका ये संघर्ष का दौर सिर्फ वीरता का नहीं था बल्कि लीडरशिप का है। उस युद्ध के बाद वेलु नाचियार ने 10 सालों तक शिवगंगा पर शासन किया। उसके बाद उन्होंने ये सब अपने बेटी को सौंप दिया। दोस्तों, रानी वेलु नाचियार की कहानी हमें सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बताती है, बल्कि ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में लिया गया एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और आज हम जिस दौर में हैं उसमें लड़ाइयाँ शायद तलवारों से नहीं लड़ी जाती, लेकिन चुनौतियाँ आज भी कम नहीं हैं। कभी पढ़ाई का प्रेशर है तो कभी करियर की उलझन, कभी असफलता है तो कभी खुद से ही चलती हुई एक छोटी सी लड़ाई। और ऐसे समय वेलु नाचियार के जीवन से एक सिंपल सी बात सीखा कि मुश्किल वक्त आपके लिए कभी लास्ट पेज नहीं होता। और अगर किसी एग्जाम में पहली बार में सक्सेस नहीं मिली तो शायद आपको थोड़ा और तैयार होना है, या फिर अगर कोई ड्रीम अभी पूरा नहीं हुआ तो शायद कहानी भी अभी भी बाकी है। और अगर कभी लगे कि बाकी सब आपसे आगे निकल रहे हैं तो याद रखिएगा कि हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है। सो फ्रेंड्स, अपनी सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, लेकिन उस इंतज़ार के दौरान खुद को इतना तैयार कर लीजिए कि जब मौका आए तो आपको किसी और मौके का वेट ना करना पड़े। तो ये था हमारा आज का प्रेरणा पुंज रानी वेलु नाचियार के जीवन के बारे में। और अब वक्त है उस सेगमेंट का जहाँ कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज का सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले कल का सवाल था कि वर्तमान में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, और इसका उत्तर है 38, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। और वहीं आज का प्रश्न है, कैल्शियम के अवशोषण और स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कैल्शियम के अवशोषण और स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और आप हमें अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvniald@gmail.com। तो भाई, अब घड़ी भी कह रही है कि सेजल के जाने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये लास्ट ट्रैक।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों नेपाल में इस समय जो परिस्थितियां हैं वे बेहद चिंताजनक है, और इस मुश्किल घड़ी में आकाशवाणी परिवार नेपाल के लोगों के साथ है। हमारी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है और हम जल्द बेहतर होते हालात की उम्मीद करते हैं। और अब दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का सफर भी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आज हमने बातें की, कहानी सुनी, म्यूजिक को एंजॉय किया और इस पूरे सफर में यही कोशिश रहा कि आपका ये वक्त थोड़ा और खूबसूरत बन सके। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्या बातें अच्छी लगी वो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट सेगमेंट में नए कहानियों के साथ, नई दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन

0: की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
0: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
1: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि बीजिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संगीता शंकर का वायलिन वादन होगा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में काव्य कौमुदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अमिता मेहरोत्रा और अभिषेक केसरवानी का काव्य पाठ। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। इसमें आज आप सुनेंगे प्रिया के स्वर में गीत और भजन। सबरस का समय होगा रात 8:30 का। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कहकशा। रात 10 सुनिएगा माल

लतनखा का लिखा नाटक बटुए वाली चाची। रात 10:30 पर उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन होगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज का संस्कृत दिवस पर विशेष काव्य पाठ। शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में भूपेंद्र कुमार के स्वर में गीत और भजन होंगे। रात 8:10 पर विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे एक विशेष भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण। रात 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम होगा। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर एजाज अहमद से बातचीत होगी, मिट्टी में जिप्सम और पायराइट्स का उपयोग। कल प्रातः 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गिरीश बजलवार का गायन होगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर कल प्रातः अमृता मालवीय के सर में गीत और भजन होंगे। वॉइस ऑफ प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 10:05 पर। कल प्रातः 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अजय कुमार के स्वर में लोकगीत। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे रूपक मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, आलेख नेहा गुप्ता का। 11:30 पर कार्यक्रम होगा यूथ एक्सप्रेस। दिन में 12:15 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे विदुषी गिरजा देवी का ख्याल गायन। हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा दिन में 12:30, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी हेलो गृहलक्ष्मी, जो कि रक्षाबंधन पर विशेष प्रसारण होगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 2:30। बच्चे अपना नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:00। युवा श्रोताओं का युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् सर्वकारः भारतस्य कृते आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। सः अकथयत् यत् क्रीडा विश्वविद्यालयेभ्यः आरभ्य आधुनिक प्रशिक्षणकेन्द्राणि यावत् समग्रदेशे एतादृशं वातावरणं निर्मीयते यत्र प्रतिभायै प्रत्येकस्मिन् चरणे साहाय्यं प्रोत्साहनं च लभेत्। अद्य दृश्य श्रव्य परांतरजालीय माध्यमेन खेलो इंडिया संवादं संबोधयन् श्री मोदी अवदत् यत् क्रीडा केवलं पदकावाप्ति पर्यन्तं सीमिता नास्ति, अपितु विकसित भारतस्य निर्माणे भारतस्य क्रीडा सामर्थ्यं युवशक्तिं च संघटयितुं एकं महत् राष्ट्रियाभियानम् अस्ति।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैश्विकक्रीडापटले स्वप्रतिभां प्रकाशयितुं देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे सामर्थ्यं विद्यते। सः असूचयत् यत् क्रीडाक्षेत्रे पञ्चभ्यः पञ्चदशवर्षपर्यन्तं वयस्कानां बालकानां चिह्नीकरणाय रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् एका महती प्रतिभा अन्वेषण योजना उद्घोषिता।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: प्रधानमन्त्री प्रसन्नतां प्रकटयन् न्यगादीत् यत् अद्य भारते क्रीडा उत्कृष्टा जीविकात्वेन अथ च व्यवसायरूपेण समुदेति।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: अत्रावसरे केंद्रीय युवा प्रकरण क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशल नेतृत्वे क्रीडा राष्ट्रीय प्राथमिकता रूपेण अथ च युवा सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधन रूपेण च संवर्धते।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: नेपालदेशे सञ्जाते आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां संख्या प्रवृद्ध्य 70+200 सम्प्राप्ता। देशस्य इयम् अतीव दारुणतमा आपत् मन्यते, यत्र 88+200 भारतीय पर्यटकानन्तर्भूय सहस्रशः विलुप्तजनानाम् अन्वेषणाय नेपाल प्रशासन संस्थाः तीव्रगत्या समुद्धरण कार्याणि प्रचालयन्ति। ह्यः दुरापन्नेन जलाप्लावेन नेपालस्य त्रिषु जनपदेषु व्यापकः विनाशो जातः। नेपाल आरक्षिबलेन सूचितं यत् अद्य 93 नूतनशवाः प्राप्ताः। तिब्बत नेपाल प्रशासनानुसारम् एतावता 13,00,000+ विलुप्ताः सन्ति, येषु बहवः वैदेशिकाः वर्तन्ते। उभयोः अधिकारिभिः ज्ञापितं यत् प्रायः 30+ देशानां नागरिकाः विलुप्ताः अभवन्, येषु प्रमुखतया भारतस्य, अमेरिकादेशस्य, मलेशिया, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, रूस देशानां पर्यटकाः सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

0: सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय आपत्प्रबन्धनबलेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन बिहार उत्तरप्रदेशयोः सीमवर्तिक्षेत्रेषु सम्प्रति कोऽपि प्रतिकूलप्रभावः नैव सञ्जातः। तथापि राज्यप्रशासनेन सह समन्वयं विधाय स्थितेः अनवरतं निरीक्षणं विधीयते। एनडीआरएफ महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला अवदत् यत् उभयोः राज्ययोः विंशतिः दलानि निरतानि सन्ति, येषु नवदलानि बिहारे, एकादश च उत्तरप्रदेशे सेवानिरतानि सन्ति।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: आपत्काले जलसंकटे वा जनानाम् उद्धाराय सुरक्षितस्थाननयनाय तथा आपत्शमनाय एतैः दलैः सुरक्षासज्जता कृता अस्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः संसूचितवान् यत् ईरानेन सह वार्ता पुनरारम्भाय कोऽपि त्वरितकालसीमा नास्ति। ईराने आर्थिकसंकटस्य उल्लेखं कुर्वन् ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सुदृढस्थितौ अस्ति, अपरपक्षे अतिचिन्तां शमनाय वार्ता वातावरण निर्माणाय च कतार प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानः अद्य तेहरान नगरे ईरानी अधिकारिभिः सह मन्त्रणां करिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन शनिवासरं यावत् बिहार छत्तीसगढ़ झारखण्ड पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन श्वः यावत् ओडिशा उपहिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्येषु अपि अतिवृष्टेः संभावना व्यक्ता। सहैव शनिवासरे रविवासरे च ओडिशा राज्यस्य कतिपयेषु पृथक् पृथक् स्थानेषु अतीव भीषणवृष्टिः भवितुमर्हति। ऋतुविभागानुसारम् अग्रिमदिनद्वये अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु, आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडुराज्ये, पुदुचेर्यां तथा करैकलक्षेत्रेषु च भीषणमेघगर्जनेन, विद्युत्पातेन, तीव्रझञ्झावातेन च सह वर्षायाः पूर्वानुमानं विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजना श्वः स्वकीयानि 12 वर्षाणि पूरयिष्यति। अस्याः योजनायाः शुभारम्भः 2014 अगस्तमासस्य 28 प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतः आसीत्। विवेकानन्दकेन्द्रस्य पूर्वराष्ट्रियाध्यक्षस्य ए बालकृष्णन्वर्यस्य निधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनुशोचितवान्। प्रधानमन्त्रिणा संस्मृतं यत् बालकृष्णेन 15+ यावत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचारान् जनं जनं प्रति नेतुं राष्ट्रसेवायै च जीवनं समर्पितम् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचो राम राम कहे कुल किसान भाइन के बहन के, सुमेर की तरफ से बहुत राम राम जोहारी। पंचो देखा एक बात ही कहे कहे कि भाई सर्दी गर्मी बरसात ही तब मौसम होबे करत है, मूल एक चीज़ की जरूरत हर मौसम में रहा तो वाटे ऊर्जा के। ऊर्जा से मतलब बा खाना पीना बनावे के, चाहे गैस हो।

लकड़ी ईंधन हुई, और साथ ही साथ भाई बिजली पंखा का भी जरूरत पड़त रहा था। अब तो गांव गांव देखा भैया फ्रिज भी सचरी के बाटे ही, साथ ही साथ और तमाम सुविधा बढ़त जात बाटे। मूल ऊर्जा रहा था, बिजली रहा था, तो सुविधा रहा था। तो यही कुल के देखत पे ध्यान में देत भे प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई गई, जोने के अंतर्गत कोशिश ही रहा था कि गांव में सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पंच भैया हरे बहनी हरे का लाभ ले सके। तो यहाँ कुल कार्यक्रम से जुड़े की जरूरत बाटे, लाभ ले की जरूरत बाटे। दूसर बात यह है भाई कि देखा जोन इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है, जैसे गाड़ी घोड़ा बाटे या मशीनन यहाँ, अगर इनका देखभाल अच्छे से न हो, सवाचा न जाए, तो बड़ा धुआं देत इनका भकभों, और ये धुआं बड़ा नुकसान दे दे होता। तो ऐसे प्रदूषण पूरे ब्रह्मांड में फैले था, जो उनके बहुत नुकसान दे बा। तो भाई एक तो यह है कि देखा तेल पेट्रोल का रहूँ मुफ्त में ना, तो दूसरे देश से खरीदा जाता, तो अपने देश का बहुत कुछ पैसा उन्हें चला जाता। तो जितना ज़रूरत बा भाई उतने कर इस्तेमाल करें, बाकी आप वैकल्पिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल करें पंचरे, तो बहुत बढ़िया रहे। और हम कहा देखा भाई आज किसान चर्चा का दिन बाटे, तो पंचरे किसान की बात सुनिए, उनका चर्चा पर चर्चा सुनिए, किसान खेती का कार्य कुछ भाई अनुभव बाटे एका बताई हैं। मुलोकरे पहले कहा तो रश्मि भारती के गाई गौनई बाटे हो जाए, फिर बात करी हुई।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ पंचो देखा ये तो गीत रहा भैया सनेसो सुन लेत गया है। अब जोन बते ही होत रही किसान चर्चा के दिन बाटे तो भैया महेशेंद्र उपाध्याय और ज्ञान सिंह पटेल ये दोनों भैया प्रगतिशील किसान हैं, इनका का कुछ अनुभव बाटे। इनसे मनोज कुमार सिंह भैया बतियाना है हम का पंचरे सुने और गुने भाई।
4: भैया देखा हो अपने पंचायती में समय समय पर जो प्रगतिशील किसान लोग हैं जो वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती करते हैं मन लगा के, उनके बुलावा जात है और उनसे जो है कि उनके खेती किसानी का अनुभव लिया जात है, जो है कि अनुभव से दूसर लोग भी पंच लोग भी अपन जो है कि लाभ उठा सके। तो आज हमारे बीच में दुई प्रगतिशील किसान लोग हैं भैया। पहला किसान है हमारे बीच में जो है कि महेशेंद्र कुमार उपाध्याय भैया, ग्राम सीधापुर मांधाता प्रतापगढ़ के हैं आप। और भैया दूसरका जो उन प्रगतिशील किसान हैं ज्ञान सिंह पटेल, ग्राम बनपुरवा चसरा ब्लॉक और बारा तहसील जिला इलाहाबाद का। भैया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा पंचायती में। सबसे पहले हम ये जानना चाहब महेशेंद्र कुमार जी कि अभी यह समय जैसे कि मान लें कि आपका जो न खरीफ का फसल रहल है जो न कि भैया तो धान का कटाई उटाई हो गए?
5: हाँ भैया धान कटाई हुई है।
4: अच्छा
5: धान क्रय केंद्र पर हमें 28 तारीख के समय मिला है।
4: अच्छा अच्छा अच्छा कैसन फसल रहा है?
5: फसल बढ़िया रहे।
4: अच्छा अच्छा तब करी बाद रवि की तैयारी शुरू हो गई हुई?
5: हाँ भैया रवि की तैयारी में आलू सरसों जौ तीनों की बुआई हो चुकी है। अब गेहूं की तैयारी होत बा।
4: अच्छा अच्छा तो कौन कौन चीज की खेती का आप तैयारी की है बाटे?
5: अब सरसों जौ और आलू तीनों की बुआई कर चुके हैं, अब सिर्फ गेहूं की खेती बची है।
4: अच्छा अच्छा तो मतलब अब गेहूं का जो है कि खेत का तैयारी करत हुई है?
5: जी तैयारी है, बस सोमवार मंगल से बुआई शुरू हो जाए।
4: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। भैया ज्ञान सिंह पटेल जी आपका जो है कि अभी जैसे खरीफ वाले फसल तो लगभग कटाई हो ही गई हुई, तो कैसन फसल रहा है आपका?
6: भैया यहाँ समय जो है फसल बहुत अच्छी रही। हम जो है अपने खेत में 90-90 धान लगवाए रहे, धान की कटाई हो गई बाटे। यह समय जो है हम रवि के फसल के लिए खेत को जो है हैरो से जुता दिए हैं, उसमें जो है ट्रैक्टर से जो है 2-3 ट्रैक्टर जो है गोबर की सड़ी खाद मिलवा करके उसको जो है
4: बहुत बढ़िया
6: बढ़िया से करवा दिए हैं। और उसमें जो खर पतवार है उसको खन खोद करके जो है गड्ढे में डाल दिया गया है, जिससे कि वो भी सड़ करके खाद ही
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया खाद बन जाए, माटी बन जाए।
6: एकदम से जोर शोर पे है। और इस समय भैया हमारे पास हमारी 1 बीघा पालक और 1

0: बीघा मूली, मूली की खेती हम लगभग जून से करते आए हैं और उससे हम बहुत बढ़िया पैसा,
1: अच्छा, मूली खेती।
0: हाँ
1: तो भाई
0: मूली की
1: एक
0: खेती
1: बीघा तो
0: बहुत बढ़िया
1: काफी होते
0: पैसा हम जो है
1: हैं,
0: प्राप्त
1: बहुत
0: किए।
1: एक बीघा अगर पालक हो गया, मूली हो गया, देखा हो जैसे पालक और मूली का नाम लिया ना, तो सही में खाए के मन के जाते हैं,
0: जी
1: और बड़ा फायदेमंद भी होता है, और एक तरीके से देखा जाए तो जो ने कि काफी हद तक ऐसे अगर अगैती खेती किया जाए तो व्यावसायिक लाभ भी
0: जी जी
1: होते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो हम थोड़ा सा जानना चाहब, जैसे आप मूली और पालक का बात कहें तो एक अनुभव जानना चाहब कि कौने तरीके से आप एक खेती करते हैं और मन कैसन लागत लगत है और लागत के अनुपात में कैसन जो है कि लाभ होता, थोड़ा अपन
0: भैया
1: अनुभव
0: हो,
1: बताएं आप।
0: हम जो है जैसे 1 बीघा मूली बोआए तो 4 किलो की बीघा जो है मूली बोआते हैं। यही जो है पालक पत्ता की जो मूली है इसको हम अपने खेत में पहले हैरो से उसको जुतवाए, हाँ गहरी जुताई, फिर जो है उसमें सड़ी गोबर की खाद भी डलवा करके फिर नौफरवा से जो है उसको जुतवा दिए।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: नौफरवा से जुतवाने के बाद पाटा मरवा दिए तो मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई। फिर जो है उसके बाद जो है पानी जैसे बरस रहा था बरसात में जो किए थे उसको जो है उसमें बिजाई करवा दिए यही मूली की। फिर
1: अच्छा
0: जो है मूली लगभग 30 दिन में जो है तैयार हो गई। 30 दिन में जो है जड़ ले ली तो उसमें जो खरपतवार नाशी कीटनाशक कुछ कीड़े लगे हुए थे तो उनका दवाओं का छिड़काव कर दिया गया तो वो भी सही हो गए। फिर हमारी जो है मूली निकलना चालू हो गई। और जब चालू हो गए तो 6,000 कुंटल से मैं मूली बेचना चालू किया हूँ। अब पर भी हमारी मूली जो है मार्केट में जा रही है।
1: बहुत बढ़िया
0: बाजार
1: भाई।
0: में जैसरा मंडी भैया हम ले जाए थे, इस समय आज 1 कुंटल मूली नई मूली गई थी 80 रुपया 70 रुपया में मूली बेच के आया हूँ। और पालक 1 कुंटल ले गए थे वो पालक जो है वो भी जो है 80 रुपया धरा, पालक भी
1: बहुत
0: बिजी
1: बहुत
0: है।
1: बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम कहीं देखा कि खेती किसानी में अगर थोड़ा सा जो है कि बदलाव लाया जाए, थोड़ा सा पारंपरिक खेती से हट के और यह तरह का मान ला कि हरी साग सब्जी की खेती किया जाए, तो निश्चित रूप से खेती किसानी बहुत फायदेमंद होता। बहुत बढ़िया ज्ञान सिंह पटेल जी। अब महेंद्र जी, हम आपसे ही जानना चाहब कि खेती में जैसे कुछ व्यावसायिक खेती का बात होते हैं, चाहे जैसे भैया बताए इनकी मूली का और पालक का, तो आप कुछ सब्जी उब्जी का खेती करत हैं या कि हे बाटे कि नाए समय
0: सब्जी खेती भैया बस अपने परिवार भर के
1: परिवार
0: खाए
1: भर
0: पिए
1: के।
0: भर के सब्जी खेती करे, जिसमें मूली आए, पालक आए, धनिया आए, बैगन आए, गोभी आए,
1: बहुत
0: इससे
1: बड़ी,
0: पे घरे खर्चा भर के निकाली
1: बहुत
0: तो।
1: बढ़िया भाई। हम कहीं कि देखा हो अगर अपने माटी के, अपने जमीन का जो ने की और अपने हाथ का बोल, अगर मान ला कि गोभी टमाटर बैगन ऐसे में मिल जात बा, मूली मिल जात बा, धनिया मिल जात बा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहें कि शुद्ध का शुद्ध और पौष्टिक का पौष्टिक, और देखा अगर तो भाई ये हो तो एक प्रकार का बचते है ना। सब्जी का महंगाई देखा बाजार में कितना ज्यादा है, तो अगर सब्जी का पैदाइश भी जो ने कि अपने खेते में हो जाता तो उससे बढ़िया कुछ ना
0: भैया
1: होता।
0: मेहमान चले तो कम से 100 रुपया रोज सब्जी हमका घरे से मिल जाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो शुद्ध एकदम
0: ओहो
1: है,
0: शुद्ध,
1: मतलब खाए के बाद
0: हाँ
1: संतुष्टि आवे और कोनो तरह का दूसरे बात का कोनो तनाव ना
0: न
1: रहे।
0: रहा।
1: एक चीज़ और जानना चाहे, आप कहा जाता है ना कि खेती किसानी पशु प्राणी बाग बागवानी, खेती किसानी के अलावा कुछ जो ना कि पशुपालन और बागवानी भी आपकी है।
0: भैया आंवला बाग है हमारे पास।
1: अच्छा, हाँ भाई,
0: हाँ
1: जो ना कि आंवला तो खैर वहाँ ज़्यादा लगत है, तो कितना मतलब क्षेत्र में है आंवला?
0: आंवला लगभग 2 बीघे में है।
1: अच्छा,
0: हाँ अच्छा पैसा मिल जाता
1: तब
0: भैया।
1: फलत आए रहे भैया
0: हाँ
1: समय जो
0: फल
1: ने कि,
0: बहुत अच्छा आया था।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो जैसे आंवला का आप मान ले कि बागवानी किए बाटे, तो का आंवला में ओकरे जो ने कि मान ला बाजार ले जाए में जाए, जो ने कहा जाता ना कि ग्राहक मिल जाए बाजार मिल जाए, तो इमन कोनो दिक्कत आवत है,
0: नहीं
1: खपत हो
0: कोनो
1: जाता तुरंत?
0: दिक्कत नहीं भैया, व्यापारी खुदे सब टहरत रहा दिन गांव गांव आंवला के पास बा, लेकिन हम सब व्यापारी नहीं सीधे मंडी में ले जाए के वहीं दे थे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ पशुपालन में आपकी है?
0: हाँ भैया 3 भैंस है हमारे पास।
1: 3 भैंस है,
0: जी
1: तो दूध तो हो थी,
0: हाँ दूध होता है।
1: तो दूध मतलब अपने खाए भर के ही होते कि कुछ मतलब बेचे बरे भी हो जाते
0: नहीं
1: हैं?
0: भैया परिवार लंबा है, घर के दूध यूज घरे में होते।
1: ये भैया हम कहीं कि देखा हो खेती किसानी में अन्न जो है कि अपने खेत का मिल जाए, सब्जी अपने खेत का मिल जाए, और सबसे बड़ी बात जो है कि कहा जाता है कि दूध दही घी
0: जी
1: अगर वो घरे के मिल जाए तो हम कहें कि घर एकदम
0: ये तीनों
1: संपन्न
0: भैया
1: है।
0: भरपूर बाग।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहब जो ने कि ज्ञान सिंह पटेल जी,
0: जी
1: कि जैसे आप मतलब एक अच्छे खासे पैमाने पर जो ने कि करते हैं जो ने सब्जी का खेती, एकरी अलावा कुछ व्यावसायिक खेती में आप करते हैं?
0: जी हम
1: हाँ
0: व्यवसाय खेती में इस समय हम भैया 2 बीघे गाजर लगवाया हूँ।
1: अच्छा।
0: 2 बीघे गाजर, गाजर जो है

0: खेत की जुताई गहरी जुतवाई करा करके जो है कि गाजर बोवा दिए हैं, एक गाजर हमारी दिसंबर में निकलने लगेगी, लगभग ये मान के चलिए कि 1 बीघे में 1 लाख से कम तो नहीं, 1 लाख से ज़्यादा ही आमदनी हमको मिलेगी। और गाजर
1: वाह।
0: की खेती में बहुत लागत भी नहीं है, हाँ ना बहुत, सिर्फ परिश्रम क्या है, सिर्फ खनाई और खुदाई कुछ हम लोग अपने से कर लेते हैं, तो सबसे कम लागत में गाजर की खेती होती है, पैसा ज़्यादा हमको मिलता है।
1: बहुत
0: उसी
1: बढ़िया।
0: गाजर की खेती में ही हम जो है आधा किलो मूली भी भैया छीट दिए थे, तो
1: अच्छा।
0: वो मूली इस समय निकल रही है। अब बड़ी साफ मूली मार्केट में जिस समय जाती है तो 50-60 की, लेकिन 70-80 नई मूली है, 70-80 की मूली हो जाती है, तो हमारा कम से कम जो है 1,000 रुपया के हमारा कंटिन्यू जो है बिक जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: अब यही
1: बिल्कुल।
0: दिसंबर में जब ये खनाई होने लगेगी तो गाजर गाजर निकलने लगेगी हमारी। और 1 बीघा मैं का टमाटर भैया लगा दिया हूँ, 1 बीघा आलू भी लगाया हूँ। आलू हमारी जो है इतनी बड़ी हो चुकी है, अब उसकी जो है उसकी मिट्टी हम चढ़वाएंगे, और टमाटर भी लगवा दिए हैं खेत में। और दूसरी खेती जो है थोड़ा से धनिया भी है, हाँ 10-20 धनिया भी मैं अपने खेत में लगवाया हूँ, वो भी तीन तीन पाती के हमारी धनिया हो गई है।
2: मनोकामना के लिए हम करवा रहे हैं।
3: हाँ अपनचो दिखाई दे रहा है किसान चर्चा के बाद। अब हेमा भाई इतनी बढ़िया बात भाई कि खेती किसानी कैसे की जाए, कैसे खेती का लाभकारी धंधा बनावा जाए, ओकरे बड़े बाजार का जोन बात बाटे, बीज बिया विसार के बात बाटे, और साथे साथ भाई वैज्ञानिक सोच के बात बाटे। किसान भैया हर ऊपर जोर दे है ने का अपनावे जरूरत बाटे। और पंचायत चल चला और तो एक बात ही कहे कहे कि भाई देखा खेती किसानी के साथ साथ आपन गोरू बछेरू सबका ध्यान दें, कहे मौसम ऐसा बाटे कि हमारा साफ सफाई जरूरी बा। अच्छा पंचो राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
1: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ज्योति बहनी,
1: हाँ विनय
0: देखो
1: भैया,
0: हम पंच अपने खेतन में हाँ दिन रात मेहनत करी थे और कोशिश करी थे कि हमारी आमदनी ज़्यादा हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे और हमारा जो खर्चा हो आराम से चलत रहे।
1: बिल्कुल भैया, यही लिए हम लोग उनका खाली एक ही फसल पर ना निर्भर रह के तमाम तरह के काम करे चाहिए। जैसे होएगा कि हम लोग पशुपालन कर ली, मधुमक्खी पालन होएगा, और जैसे गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सके भैया।
0: एक के साथ साथ सब्जी उत्पादन है, औषधि उत्पादन है या बागवानी है, कहे का मतलब है कि ऐस काम करे के यहाँ है जो अपनी खेती में सहायक भी बने और हमार आमदनी भी बढ़त रहे।
1: बिल्कुल भैया सही कहे हो, ऐसे ऐसा काम करिए जो एक दूसरे के जोड़े।
0: जोड़ है। अब जैसे पशुपालन है तो पशुपालन में का होता है कि देखो जो अपनी खेती में अवशेष बचत हैं वो चारा के रूप में जो है वो प्रयोग हो जाते हैं पशुन में, और जो पशुन का अवशिष्ट होते हैं वो जो है खेती में खाद के रूप में आ जाते हैं, मैंने खेत की भी खुराक पूरी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बताया भैया। देखो जोन किसान जो है एक फसल पर निर्भर रहा थे, वो मान लियो कोनो मौसम खराब हैगा या फसल में रोग लाग गवा या बाजार भाव अच्छा ना मिला, तो इसे उका नुकसान उठाए पड़त है। मगर ई जोन हम लोग तीन चार काम करबे

0: तो उमक आमदनी के भी कई जरिया हुई हैं भैया।
1: बिल्कुल, यह के साथ ही होते हैं कि जैसे जो अपन छोटी मोटी आमदनी है और रोज के खर्चा में हो जाते हैं, और जो मुख्य फसल अपन होते हैं वह बचत के रूप में आ जाते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल।
1: पास बचत भी हो जाता, अपन काम हम ठीक ढंग से कर सके थे। और ज्योति बहनी एक बात और है कि ठीक ढंग से काम करे के खातिर ये बात के बहुत जरूरत होते है कि हमारे तरह बढ़िया और सटीक जानकारी हो।
0: बिल्कुल भैया, तो यही लिए जो है आज के खबरें सुन ली जाए।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र

0: रही है। इसके तहत करीब 10 लाख किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर उत्पादन और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। परियोजना के तहत गूगल के सहयोग से ओपन डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौसम, मंडी भाव, मिट्टी और खेती से जुड़ी जरूरी सलाह उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार का फोकस कृषि की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को परियोजना के समझौतों को तेजी से लागू करने और इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यानी तकनीक के सहारे यूपी की खेती को ज्यादा उत्पादक और किसानों की आय को अधिक मजबूत बनाने की तैयारी है।
1: तो ज्योति बहनी,
2: हाँ बीने
1: देखो
2: बीना।
1: ये तो रही खबर के बाद, जानकारी के बाद, क्योंकि देखो जब तक समाचार दुनिया भर का ना ही मिलते तब तक हम अपन जान नहीं पाए थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। और एक बात और है, बात यह है कि जैसे जौन अपन खेती किसानी हो तो, मैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो अगाया सो सवाया, जौन काम आप पहले करी हो उमा सफलता मिली। खास करके जौन खेती और सब्जी उत्पादन है इमा तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब लागू होते हैं। जैसे सब्जी होते का होते, शुरुआत में अपन बाजार में हो तो कितने ऊंचे भाव पर होते हैं,
2: बिल्कुल
1: और के
2: बिल्कुल
1: बाद में हाँ धीरे धीरे उसका भाव गिरने लगे थे, और फिर एक समय ऐसा जब बहुत अधिकता हो जाए तो भाव नीचे भी आ जाते हैं। तो अगर समय पर जागरूक रहा जाए और अगेती खेती की जाए और वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो लाभ निश्चित रूप से होते हैं।
2: तो ठीक है भैया, तो एक भेंट वार्ता सुन लीजिए जी का विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती। और जी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो इस समय क्या कुछ संभावना है इसकी?
4: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। फूल गोभी में अगेती मध्यम वाली फसल की बुआई हो चुकी है। अब हम बात करें कि इस समय अगस्त से लेकर के सितंबर तक हम कौन सी बीज की नर्सरी तैयार करें, तो पूसा सिंथेटिक है, पूसा हिमज्योति है और पूसा शुभ्रा है। और देर से जो बोए गए पूसा स्नोबॉल K1 है, अब पूसा स्नोबॉल 16 है और पूसा KT125 है। ये फूल गोभी की प्रजाति है। देखिए आजकल फूल गोभी में भी हम बाज़ार में देखते हैं कि लाल गोभी और पीला गोभी भी प्रजातियां लगाई जाती हैं, जो एक आकर्षक भी रहता है और किसान को बेचने में भी आसानी हो रही है। इसमें आमदनी जो आम गोभी है उससे कम से कम 7-8 रुपया अधिक बिकता भी है। तो किसान भाई लाल गोभी में और पीले गोभी में बेलेटिना हिमाचल की प्रजाति है, वो भी आप लगा करके आप इससे अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम बंद गोभी की बात करते हैं तो गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है, पूसा डर्म हेड है, प्राइड ऑफ इंडिया है और पूसा सिंथेटिक है, श्री गणेश गोल है, बजरंग है। और इसके साथ पत्ता गोभी में भी आप बात करेंगे तो लाल पत्ता गोभी भी आता है। उसमें क्या होता है, स्टोरेज क्षमता थोड़ा सा आम गोभी है उससे अधिक होता है, तो उसको भी हम लाल पत्ते गोभी के नाम से आता है, उसके भी रेड कैबेज जिसको बोलते हैं उसको आप नर्सरी इस समय डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि गांठ गोभी की भी तमाम प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें लार्ज ग्रीन है, किंग ऑफ नॉर्थ है, पर्पल भी आना है, वाइट भी आना है और पालम टेंडर बोब है। ये प्रजातियां गांठ गोभी की हैं। और आजकल देखिए कि अधिक जो पोषक तत्वों से भरपूर रहता है तो उसको हम ब्रोकली की खेती, एंटीऑक्सीडेंट में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी डिमांड आम गोभी से ज़्यादा रहती है। अगर इसकी बात करें उत्पादन की तो लगभग हमारा इसकी अवधि 70 से 80 दिन की ये फसल होती है। और ये जब हम बात करते हैं कि इसकी प्रजाति कौन से लें तो इस समय अगर आप देखेंगे तो बाल्थम 29 है, ग्रीन स्प्राउटिंग है, मीडिया है और जो संकर प्रजाति है डेस्टिनी है, मैराथन है और फैंटेसी, ये संकर प्रजातियां हैं जो 100 से 110 दिन में तैयार होती हैं। तो उसके लिए भी एक प्रजाति है पूसा ब्रोकली 1 है, KTS 1 है, पालम विचित्र है और पालम समृद्धि है। ये हमारी ब्रोकली की प्रजाति है और लगभग ये 70 से 75 दिन में 80 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की जहां बात करें लगभग 72 से लेकर 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन भी मिलता है।
3: डॉक्टर साहब अभी क्या इस महीने में यानी अगस्त भर में जो मध्यम गोभी है उसकी बेहन पड़ सकती है।
4: हाँ।

0: अगस्त में जो मध्यम वाली प्रजाति है उसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं।
1: अंतिम समय
0: है, अगस्त के अंतिम समय तक आप डाल सकते हैं। सितंबर 15 सितंबर तक इसको तैयार कर सकते हैं।
1: और सितंबर में अगर डालनी है तो पिछेती प्रजातियों की?
0: हाँ, सितंबर में अगर डालना है किसान भाई, तो पिछेती जो पूसा स्नोबाल है, KT1 है, 25 है, ये प्रजातियां जो पिछेती हैं वो डाल, पूसा स्नोबाल 16 है, ये डाल सकते हैं।
1: पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली और स्प्राउट ब्रुसेल्स की नर्सरी कब तक डाल दें किसान भाई?
0: देखिए किसान भाई, जो गोभी की बात हो रही है तो अंतिम जो लेट वाली प्रजातियां वो डालें, और पत्ता गोभी की अभी आप डाल दें। ब्रोकली की भी बहुत ही उपयुक्त समय है नर्सरी डालने का, सितंबर के प्रथम सप्ताह तक। आप कुछ प्रजातियां 15 सितंबर तक भी इसकी नर्सरी ब्रोकली की डाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है?
0: देखिए किसान भाइयों, चूंकि आप देखते हैं कि हमारा मौसम विपरीत कंडीशन है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश एकदम नहीं होती है, तो वो जब हम नर्सरी डालते हैं तो ये ध्यान दें कि नर्सरी डालने के पहले देख लें कि कभी भी नर्सरी हम खुला, जहां रोशनी मिले, और साथ साथ उसमें ऊंचा बेड बना करके, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट दे करके, एक नाली दे करके बेड बनाए। बेड की चौड़ाई हमारी 1 मीटर रखें, लंबाई अगर 3 मीटर और आवश्यकता अनुसार 5 मीटर तक लग सकते हैं, फिर एक नाली दें। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो जो हमारा संकर प्रजातियों 7 से 8 बेड की आवश्यकता होती है। अगर हमारी उस तरह के ओपन प्रजाति है तो 10 से 15 बेड की हमारी आवश्यकता होती है। नर्सरी जब डालें तो किसान भाई ये ध्यान दें, जो 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा है उसमें गुड़ाई कर लें, 5 से 7 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद हो बारीक हो उसमें मिला दें। उसके साथ प्रति बेड 25 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम DAP और 25 ग्राम MOP प्रति बेड के हिसाब से, और उसके साथ अगर नीम की खली है 200 से 250 ग्राम आप नीम की खली उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद उस बेड को एकदम भुरभुरा बना दें। अब बनाने के बाद बेड पे उसमें कैप्टान या थीराम दवा होती है बुआई के पूर्व, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उस बेड पे छिड़काव कर दें, और उसके बाद बीज की उस पे बुआई करें।
1: डॉक्टर साहब, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी रोपाई लायक गोभी वर्गीय सब्जियों की?
0: देखिए किसान भाइयों, जब हम नर्सरी की बात करते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या ब्रोकली की, तो हमारा करीब 4 से 6 सप्ताह यानी 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, रोपाई में कौन कौन सी बारीकी है और अंतरण क्या होगा?
0: किसान भाइयों, जब मध्यम और पछेती की बात होती है तो उसमें अगर हम लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं, जो मध्यम और पछेती है, और इसमें ये ध्यान देते हैं कि जब हमारा रोपाई करने के पहले उसकी खेत की तैयारी करते हैं, और खेत की तैयारी में हम देखते हैं कि उसमें खाद एवं उर्वरक कितना दिया जाए, तो जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय हम 100 से लेकर 150 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद उस खेत में मिला देते हैं। जब रोपाई करना होता है तो लगभग 48 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस और 24 से लेकर के 32 किलोग्राम पोटास, ये प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एंड पोटास की पूरी मात्रा जब हम रोपाई करते हैं उसके पहले हम देते हैं।
1: गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है?
0: देखिए किसान भाइयों, गोभी में तमाम तरह के विकृतियां आती हैं, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे एक ब्राउनिंग हो जाती है गोभी में, कभी कभी आप देखते हैं फूल आता है तो ब्राउन हो जाता है, और फूल गोभी में, और उसमें क्या होता है जो डंठल होते हैं उसमें खोखलापन आ जाता है, तो ये बोरान की डिफिशियंसी होती है। अगर हम ये शुरू में जब हम रोपाई करते हैं खेत की तैयारी करते हैं तो 400 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ में आप बोरान उसमें डाल दें,
1: यानी बोरेक्स,
0: बोरेक्स सुहागा जिसको बोलते हैं, और इसके साथ अगर बीमारी उस समय अगर आ रही है तो 0.2 से लेकर 0.3% तक घोल बना करके उसमें छिड़काव करें,
1: यानी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से
0: 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसमें बोरेक्स का छिड़काव करें। एक आप देखते हैं कि गोभी में बटनिंग आती है, छोटे छोटे गोभी के फूल देखते हैं बटन आकार के हो जाते हैं, वो इसमें क्या होता है किसान भैया, इसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। दूसरा ये होता है कि अगेती की पछेती में बुआई कर दी या पछेती की अगेती में कर दिए, और जब हमारी नर्सरी लेट कंडीशन में हम रोपाई करते हैं तो उस समय ये समस्याएँ आती हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गोभी वर्गीय

0: सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा अयोध्या आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 87-550-110-86, 8755-010-086।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर साहब?
1: किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि गोभी वर्गीय खेती करने के लिए, चाहे वो गांठ गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे फूल गोभी हो, अगर आप 1 एकड़ में सही तरीके से खेती करते हैं तो हमारा मान के चलिए 100 से लेकर 120 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन होता है। अगर इसकी लागत की बात करें तो लगभग हमारा 35 से 40 हज़ार तक, 45 हज़ार तक लागत आता है। अगर 10 से 15 रुपये किलो हमारा बिकता है तो हम, अगर किसान भाई ठीक से करें तो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000, 2 लाख तक आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेंगे।
0: डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी,
3: हाँ विनय भैया,
2: देखो ये जो आज के अपन भेंटवार्ता रहा है, गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, या कैसे लगा आपको?
3: बहुत बढ़िया रही भैया। इसके लिए डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी,
3: हाँ विनय भैया,
2: आजकल अगर मचान पर बैठो और
3: हाँ
2: झमाझम बारिश हो रही हो
3: अरे वाह
2: तो मन
3: भैया,
2: में जो है मलहारे उठती
3: तुम मचान पर बैठे
2: हैं।
3: की बात कर रहे हो, हम तो भैया सीधे झूला झूले की बात कर रहे हैं।
2: लेकिन झूला हो चाहे मचान हो, जब बरसात होते तो बरसात में गीत गाने का आनंद कुछ और हो जाता है।
3: ठीक है भैया,
2: तो
3: तो
2: देखो,
3: आज का लेके आए हो फिर?
2: हाँ, आज अपने कार्यक्रम में पंच बहन के खातिर एक लहन मल्हार गीत, झमाझम बरसो, और इका गाय रही हैं आराधना राठौर और उनके साथी।

0: हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: ज्योति बहनी।
4: हाँ विनय भैया।
3: देखो एक बात और है, कुछ पंच भाई अपने बीच में ऐसे होते हैं जो ऐसी तकनीकें निकालते हैं या कहीं से कोई तकनीक सीख के आवत हैं, ऊपर काम करते हैं, तो बहुत जो खेती उनकी होते है अच्छी होते है और बहुत मुनाफे का सौदा होता है। कई बार लोग कहने लगते खेती घाटे का सौदा हो गए, तो उनका घाटा ना कभी होता है बल्कि कई गुना मुनाफा पैदा करते हैं सामान्य किसानों से।
4: बिल्कुल भैया, ऐसे किसानन का हम लोग नवाचारी किसान कही थे।
3: बिल्कुल कही थे, अब बड़ा मन होता है कि ऐसे किसान से मिला जाए, ऐसे किसान के काम के जानकारी दूसरे पंचन तक पहुंचे। तो देखो यह क्या प्रयास है, आज अपने कार्यक्रम में हाँ किसान हैं भैया विजेंद्र प्रताप सिंह, ई मचान पर करेला के खेती करते हैं।
4: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी विधि है भैया।
3: हाँ, तो इनसे जाना जाए इनकी का तरकीब है, का तकनीक है, जिसके कारण ये बढ़िया अच्छे किसान माने जाते हैं और अच्छी पैदावार इनकी होते हैं।
5: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के बेलसर ब्लॉक के बरसड़ा गाँव, जहाँ प्रगतिशील किसान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भैया अपने खेत पर है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भैया नमस्कार।
6: नमस्कार सर।
5: ब्रजेंद्र भैया, आप मचान पर करेला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है आपका?
6: लगभग करीब 2.5 एकड़ का है।
5: ये पहली बार है या इसके पहले भी आपने मचान पर करेला उत्पादन किया है?
6: इसके पहले गर्मी में खीरा लगा रखा था
5: जी,
6: खीरे की फसल खत्म हो गई तो उसी मचान और उसी मल्चिंग पे हमने करेले की बुआई कर दी।
5: अच्छा,
6: तो अब उसका भी तुड़ाई चालू हो गया।
5: खरीफ वाले करेले की बुआई आपने कब की?
6: बुआई सर इसकी हुई थी वही जुलाई फर्स्ट वीक में।
5: और फलत चालू हो गई?
6: हाँ फलत चालू।
5: तो ये बताएं कि करेला की बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फलत की तुड़ाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप करेला में?
6: जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने इसमें पहले खीरे की फसल ली थी, उसकी सफाई कर दी खेत की।
5: हाँ।
6: उसमें हमने एक ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे कर दिया, घास सब जल गई। और उसके बगल खीरे की बुआई हुई थी, उसी के बगल छेद करके हमने करेला बुआ दिया।
5: अच्छा,
6: यानी कि खाद वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ बीज लगा है या फिर अब जो दवा पड़ रही वो लगा है।
5: तो बुआई के बाद जमाव कितने दिन में हो गया?
6: जमाव में 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, 8 दिन में।
5: उसके बाद फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
6: फसल वही हमारी ये जो वैरायटी है 211 नंबर।
5: हाँ,
6: इसकी तुड़ाई 45 दिन पे चालू हो जाती।
5: तो इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं ये जो नई किस्म है?
6: जैसे हमने देखा, जैसे पहले जो करेले लगा रहे थे थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जा रहा था।
5: हाँ।
6: और रंग थोड़ा हल्का कम उसका ग्रीन था, इसका डार्क ग्रीन है और वजन भी अच्छा है, ठोस रहता है अंदर तक। और फलत 45 दिन पे तो उत्पादन इसका जल्दी मिलने लगता है।
5: और मार्केट में डिमांड अच्छी होगी?
6: मार्केट बहुत अच्छी डिमांड है, इतना यानी खूबसूरत करेला है ये, तो बहुत बढ़िया है।
5: ये बताएं कुल रकबा आपका 2.5 एकड़ का है
6: जी? जी।
5: तो कितने दिन पर तुड़ाई कर रहे हैं?
6: अभी तो तुड़ाई मान लीजिए 4th या 5th दिन होती है, तो 7-8 कुंटल निकल रहा है, लेकिन ये है कि 10 दिन बाद ये करीब 10-11 पहुंच जाएगा।
5: 10-11 कुंटल?
6: हाँ, और भी बढ़ सकता है।
5: फसल की भूख कैसे मिटाते हैं, खुराक क्या देते हैं?
6: खुराक समय समय पे स्प्रे होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, एनपीके वगैरह का, पेस्टिसाइड कीटनाशक का भी डालना पड़ता है।
5: क्या फर्टिगेशन के माध्यम से?
6: फर्टिगेशन तो वही बस स्प्रे में चलता है, एनपीके है 20-20-0-52-34 है।
5: हाँ।
6: बदल बदल के नहीं, दोनों को चला रहे हैं, जब ग्रोथ की जरूरत होती है तो 20-20-20 चला देते हैं।
5: हाँ।
6: और जब जैसे उत्पादन लेना हो तो 0-52-34 है, प्लस और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए हैं।
5: कुछ समस्याएं आती होंगी हानिकारक कीट और बीमारियों की?
6: हाँ, समस्या इस समय जैसे इधर बेल वाली जो है फसलें, कुकरविट्स, इसमें डाउनी मिल्ड्यू और थोड़ा वायरस का ज्यादा रहता है
5: जी,
6: कोड जिसको बोलते हैं देसी भाषा।
5: हाँ।
6: इसकी दवा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
5: तो इसका प्रबंधन कैसे करते हैं?
6: इसमें बदल बदल के दवा डाला जाता है।
5: कुछ IPM के उपाय भी अपनाते हैं?
6: इसको फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, वो स्टिक आती है चिपकाने वाली, सफेद भुनगे और काले के मच्छर के लिए।
5: हाँ।
6: पीला और नीला कार्ड वो भी लगाया जाता है।
5: आगे कौन कौन देखभाल करेंगे आप जो मचान पर करेला चढ़ाए हैं?
6: अब जैसे शिमला

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि

0: मिर्च की नर्सरी पड़ी हुई है उसको लगाना है 1 एकड़।
1: हाँ,
0: अब ये चालू हो गया तो टूटेगा पूरी बरसात।
1: करेला पूरे बरसात भर आपको मिलेगा, कब तक उम्मीद है?
0: अब जितना मेंटेनेंस के ऊपर है, जितना दवा पानी पड़ जाए कायदे से, टूटेगा। अभी तो चालू हुआ है, ये पूरा चलेगा मुझे लग रहा है नवंबर तक।
1: एकड़ पीछे अगर लागत की बात करें तो मचान पर करेला उत्पादन में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन का आंकड़ा क्या है और आपका मुनाफा होगा कितना?
0: इससे की लागत तो बहुत ज्यादा नहीं है, दवा जो पड़ रही है या लेबर चार्ज लग रहा है, मैंने बताया नहीं मल्चिंग और तार बांस वो सब उसी वाला लग गया, उसी पे हमने ले लिया इसको। तो लागत तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लागत तो बीज का और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और स्प्रे फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का मिला के मुझे लग रहा है कि करीब 20,000 रुपए एकड़ लगेगा।
1: और उत्पादन कितना तक उम्मीद है?
0: उत्पादन अगर मेरा जैसे करेला मीडियम टूट जाए तो एकड़ में मान के चलिए 150 क्विंटल तक टूट जाएगा।
1: और बाजार भाव कैसा मिल रहा है इस समय?
0: बाजार ठीक है, अभी तो 32 रुपए 30 रुपए 32, एक दिन 35 में भी बिका था।
1: हाँ
0: हाँ, 30 से नीचे नहीं रहेगा। मैंने बताया नहीं कलर और साइज बहुत प्यारा है इसका।
1: तो क्या उम्मीद लगाए हैं कि एकड़ में कितना निकाल लेंगे?
0: देखिए सब्जी में एक बार मैंने आपसे और भी बताया भाव राजा होता है
1: जी,
0: लागत अभी 2-3 तोड़ाई में अपनी निकली आएगी, उसके बाद जो निकल जाए मजदूरी काट के अपना मुनाफा ही है।
1: जो आपका अब तक का तजुर्बा है मचान पर करेला उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए अब फसल परिवर्तन के लिए भी हमने आपको बताया था, जैसे हमने पहले इसमें लगाई नवंबर में मटर, मटर के बाद हमने मचान पे लगा दिया खीरा
1: जी,
0: खीरा अपना जून में खत्म हो गया, उसके बाद करेला लग गया, पूरी बरसात चलेगा।
1: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं आप?
0: हाँ, तो जैसे जो बीच में मटर की खेती हो जाती है
1: जी,
0: उससे रिलैक्स मिल जाता है, खेत को
1: ताकत मिल जाती
0: है। हाँ, ताकत मिल जाती। दलहनी का एक बीच में लेना बहुत आवश्यक है, 12 महीने में एक बार कोई भी खेत उसमें दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। ये करना है तो मटर वगैरह या बीन्स है, या बोलते हैं आप ये लोबिया भी बो सकते हैं। अगर जैसे आप ग्रेन कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ऑप्शन है आपके पास।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: यही बताना है कि फसल परिवर्तन, फसल चक्र बहुत आवश्यक है। एक बार जिसमें इसमें साल में एक बार गोबर की खाद भी पड़ेगी, एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर की खाद में जरूर डालता हूँ, बहुत हेल्थी रहे, कमजोर ना होने पाए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ, मोबाइल नंबर बोले दे रहा हूँ, 97-94-44-72-59, 9794-44-7259, 97-94-44-72-59, 9794-44-7259।
1: ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बात हुई, आप 2.5 एकड़ मचान पर करेला उत्पादन कर रहे हैं, और जो भी आपका तजुर्बा था उसको आपने बताया, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्योति बहनी, ऐसा करो कि पंचमहल के मौसम की जानकारी जरूर दो।
4: बिल्कुल भैया, तो आज देखो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो हमका जानकारी मिली उसके अनुसार आज दिनांक 27/8/2026 का वर्षा का पूर्वानुमान है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जो है संभाग में स्थानन पर वर्षा जो है गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है भैया।
3: मतलब कहीं हल्की कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है।
4: हाँ भैया।
3: और देखो हम पंच प्रयास गए थे कि अपने पंचन तक का नई नई जानकारी पहुंचे, नई नई बातें पहुंचे और खास करके जो पंच भाई सुनत है उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे।
4: बिल्कुल,
3: इसके लिए जरूरी है कि अपने कार्यक्रम का पता पंच बहन का जरूर बतावा जाए।
4: बिल्कुल भैया, तो पता बता दियो आप।
3: हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा।

0: केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। अगर हमका ईमेल करें तो ओहू का पता हम अपने पंच बहन का बता दी। हमारा ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com। इस पर आप हमका मेल भी कर सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हो। हमका इंतजार रही आपकी प्रतिक्रिया के। और ज्योति बहनी,
1: हाँ विनय भैया,
0: देखो अब अपने आज के कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद, कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि, कहा प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज, SDRF और PAC की टीमें मौके पर पहुंची। और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट सहित 2 की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल व विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक

0: हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
0: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: ये कार्यक्रम देशभर में 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया था। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के 9 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 से अधिक केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उपस्थित युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का ये प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले।
2: बीते 12 वर्षों में सरकार का निरंतर यही प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक लोग इस देश के अंदर खेल सकें, विशेष तौर से युवा, जिसकी सबसे बड़ी आबादी आज हमारे देश में है, और 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना हम उसी युवा सामर्थ्य के बल पर देख रहे हैं।
1: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नए उद्बोधन में कहा कि खेलो इंडिया भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था, और अब खेल का विजन उन्होंने इस बार 15 अगस्त को बताया है और 2036 में एक प्रबल दावेदारी मेजबानी के लिए ओलंपिक के लिए की जाएगी, और उसके लिए 36,000 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट रखा है।
1: उधर बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत में युवा ही अहम भूमिका निभाएंगे।
4: देश के युवा आज ये तय करेंगे कि विकसित भारत का संकल्प जो 2047 का है, ये युवाओं के कंधे पर ज्यादा है, युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है।
1: सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रयास देश के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और विश्वास पैदा करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स यूपी में है, इन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सरकार का काम है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के उपरांत युवा उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
5: हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, बड़े उद्योगों को जिनकी संख्या मात्र 12,000 थी, आज हम उसको लगभग 3 गुना करने में सफलता हमने प्राप्त की है। ये है नया यूपी जो अब पीछे हटने वाला नहीं, तेजी के साथ देश की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह कल से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि 29 अगस्त को रक्षा मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम

0: का सीधा प्रसारण सुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे या सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन 1070 शुरू की है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने राहत बचाव टीमों को सक्रिय किया है। बचाव अभियान के लिए SDRF की एक प्लाटून भेजी गई है। इसके अलावा PSC की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से सीमावर्ती जिलों के हालात पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय और नेपाली दूतावासों से भी संपर्क किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जल स्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज NDRF की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: कानपुर में आज गंगा नदी के किनारे एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक प्रशिक्षक और एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। 2 इंजन से युक्त 4 सीटों वाला ये विमान गर्ग एविएशन का था, जो कानपुर के सिविल हवाई अड्डे से एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित करता है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना की सूचना DGCA को दे दी गई है। तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच DGCA की टीम द्वारा की जाएगी। प्रदेश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बसों में एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा, सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा, प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज। SDRF और PSC की टीमें मौके पर पहुंची। और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट सहित 2 की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिषेक केसरवानी और अमिता मेहरोत्रा से उनका काव्य पाठ। तो लीजिए, सबसे पहले सुनिए अभिषेक केसरवानी से उनका काव्य पाठ।
3: इस प्रकृति की हर कलाएं, तू हंसे तो मुस्कुराए, आ रही सांसों में तेरी मेरी सांसें घुलती जाएं। इस धरा के 2 ही ध्रुव हैं, शेष और कुछ रह न जाए। तू धरा स्पर्श करके इस गगन को आस दे दे। तू धरा स्पर्श कर

दे दे। अगला बंद देखिए। गिरते झरने गीत गाते, धड़कने भी गुनगुनाते, प्रेम की बिजली चमकती,

आस दे दे, शिल्प में विश्वास दे दे, गढ़ सकूं वो आस दे दे। अगला बंद देखिए कि शब्द संसाधन मिला है, पूर्ण मौलिक ये कला है, प्रेम के बादल न जिस पे सूर से वो ही जला है, आ रहे झोंकों में खुशबू तुझको ही छू कर चला है, निष्कपट निर्दोष मेरे हृदय को एक आस दे दे, निष्कपट निर्दोष मेरे हृदय

बस दे दे। और अंतिम वन देखिए कि रीते हैं सागर किनारे, आंसुओं के हैं सहारे, गर्भ में सागर के मोती होंगे पर दिखते कहाँ रे। एक

दे दे, कर सकूं अभिमान दे दे, प्रेम युत सम्मान दे दे, कर सकूं अभिमान दे दे। और हमारी दूसरी रचना है माँ भारती को समर्पित, विश्व

गीता करूं, पिस गए पत्ते ही ना के माथे का चंदन बना, पिस गए पत्ते ही ना के माथे का चंदन बना, मन की कोमल कल्पना संग सुष्मिता संध्या करूं, मन की कोमल कल्पना संग सुष्मिता संध्या करूं, विश्व भर को ज्ञान देकर मानसी तुम हो गई, शालिनी और बनविनीता ज्ञान सी तुम हो गई, विश्व भर को ज्ञान देकर मानसी तुम हो गई, शालिनी और बनविनी नीता ज्ञान सी तुम हो गई, दीपिका हो दीप भी हो वंदना ये जग करे, दीपिका हो दीप भी हो वंदना यह जग करे, जग में तुम मेरा माँ जग ध्यान से तुम हो गई, जग में तुम मेरा माँ जग ध्यान से तुम हो गई, सारा जग महिमा तुम्हारी जान के प्रज्ञा हुई, कामनी जग के लिए तुम साधना श्रद्धा हुई, सारा जग महिमा तुम्हारी जान के प्रज्ञा हुई, कामनी जग के लिए तुम साधना श्रद्धा हो।

गंगा तुमसे जग की शिक्षा और दीक्षा हुई, ज्ञान गंगा तुमसे जग की शिक्षा और दीक्षा हुई। सांस हो आखरी इस वतन के लिए, फिर से जीवन मिले इस

चार संगम पे छा जाता है, जब मकर राशि में सूर्य आ जाता है। सारा संसार संगम पे छा जाता है, बूंद अमृत के छल के थे वो आज भी बूंद।

0: मूल से है जुड़े तार अपने परम मूल से, छोड़ दे जो वो बचता अधेला नहीं, छोड़ दे जो वो बचता अधेला नहीं।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिषेक केसरवानी से उनका काव्य पाठ। और अब लीजिए सुनिए अमिता मेहरोत्रा से उनकी कविताएं।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बेटी। एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया सी जब अपने नन्हे नन्हे पांव से ठुनक ठुनक घर में चलती, घर में मानो पुरवैया बहती, हाँ पुरवैया बहती, खुशियों की महफिल सजती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से तोतली बातों से दिल के तार बजाती, उसकी एक मुस्कान पर माँ बलि जाती, हाँ माँ बलि जाती, पिता की थकान मिट जाती, थोड़ी बड़ी होते ही न जाने कब सयानी हो जाती, माँ का रसोई में हाथ बटाती, पिता के लिए पानी का गिलास लाती, हर किसी के अधरों पर मुस्कान खिलाती, रक्षाबंधन पर भाई से नोक झोंक करती, हाँ नोक झोंक करती, पर जरूरत पड़ने पर भाई की रक्षा करने आ जाती, पर समय चक्र के चलते बहुत जल्दी सयानी हो जाती, अपने सपने सजाते मंजिल पाते सदा हर किसी को संभालती, बड़ी बहन तो कभी माँ भी बन जाती, हाँ वो माँ भी बन जाती, जब ये नन्ही बिटिया नन्ही कली बड़ी होकर कुछ पद प्राप्त करती तो सबका सर गर्व से ऊंचा उठाती, अपने साथ साथ हर एक का मान बढ़ाती, माँ बाप की नन्ही बेटी जब सयानी हो ब्याह दी जाती ससुराल जाती तो उस घर का मान बढ़ाती, दोनों कुलों के सम्मान की रक्षक बन जाती, और आज की बेटी अपने माँ बाप का भार भी सहर्ष उठाती, वृद्ध माँ बाप का संबल बन उनका आधार बन जाती, बेटी

0: सदा ही दिलों पर राज करती, हाँ दिलों पर राज करती, सब में प्रेम की श्वास भरती। आज के दौर में बेटी हर दिल अजीज बन जाती। नन्ही सी, प्यारी सी, गुड़िया सी बेटी जिस घर में पैदा हो जाती, अधरों पर खुशियों की मुस्कान खिल जाती, दिल में सुकून की लहर छा जाती, माँ बाप की जिंदगी संवर जाती। हाँ माँ बाप की जिंदगी संवर जाती। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्यार की डोर। प्यार की डोर आगे बढ़ी, परवान चढ़ी, नित नए वादे कस्मे होने लगे, मुलाकातें बढ़ी, उपहारों का आदान प्रदान हुआ, नित नए सपने देखने लगे, समय को पंख लगे, दिन तेजी से गुजरने लगे, मधुर सतरंगी स्वप्नों संग ख्वाबों के दौर सजे। हाँ ख्वाबों के दौर सजे। जब प्रेमी युगल हाथों में हाथ लिए बैठते तो घंटे गुजरने लगे, एक दूसरे के सांस से दिन खुशगवार लगने लगे, बीतते समय में एक दूसरे के बिन अधूरापन खलने लगा। फिर क्या, विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हाँ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए, प्यार की डोर का गठबंधन हो गया। समय तीव्र गति से दौड़ चला, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, मन कुछ कुछ थकने लगा, कर्तव्यों की दौड़ में प्यार थकने लगा, कभी कभी खटकने भी लगा, कुछ कुछ तकरार हुई, कभी कभी नोक झोंक भी होने लगी, सच्चाई के धरातल से सपनों की नींद खुली, जो पल पल साथ के कस्मे खाते थे अब सामना करने से भी घबराते थे, कभी चिल्लाते कभी झुंझलाते थे, कस्मे वादे टूटते जाते थे पर समझ न पाते थे, ये कैसी उलझन है आन खड़ी, कैसे ये दरार पड़ी। धीरज और संयम का साथ लिया, मन में विश्वास बड़ा किया, फिर क्या, प्यार की डोर पुनः पुनः मजबूत हुई। हाँ पुनः पुनः मजबूत हुई, आगे बढ़ी, परवान चढ़ी, प्यार की डोर पुनः परवान चढ़ी। हाँ विश्वास और संबल से पुनः परवान चढ़ी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पत्र। एक वो दौर था जब पत्र लिखे जाते थे, जब पत्र आते थे उनका इंतजार करने वाला डाकिये के आने के समय पर नित्य टटोलता था लेटर बॉक्स को। हाँ नित्य टटोलता था लेटर बॉक्स को, पत्र आते ही उल्लसित हो पढ़ता था, कभी भावुक हो रोता था, कभी खुश हो मुस्कुराता था, संभाल कर सहेज कर उसे रखता था और जब तब मन करे पढ़ता था। पत्र में वो लिखने वाले की खुशबू महसूस करता था, उन भावनाओं और संवेदनाओं को समझता था जो पत्र को लिखने वाला अपने दिल में रखे होता था। समय बदला, दौर बदला, पत्रों का रूप बदला, अब व्हाट्सएप और ईमेल के दौर में पत्र तो अभी भी आते हैं पर आप उन्हें छू नहीं सकते, सूंग नहीं सकते, तह करके रख नहीं सकते, छीन कर फाड़ नहीं सकते। हाँ छीन कर फाड़ नहीं सकते। पत्र होते थे भावुक क्षणों के साथी, संवेदनाओं के वाहक, बड़े प्यारे होते थे पत्र। हाँ ये पत्र बड़े प्यारे होते थे, ये पत्र। वर्षा ऋतु का आगमन। मेरी अगली कविता का शीर्षक है वर्षा ऋतु का आगमन। ग्रीष्म काल के प्रचंड ताप से तप्त धरा पर जब वर्षा की प्रथम बूंद गिरी, मानो तप्त हृदय को अमृत की धार मिली, माटी से एक सुंदर सुगंध उठी, ग्रीष्म के ताप से आहत पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव, सभी जीवों में एक नई उमंग का संचार हुआ, एक नई चेतना का प्रसार हुआ। जो बूंद एक सीप के मुंह में पड़ी, हाँ सीप के मुंह में पड़ी, एक नए मोती का निर्माण किया, कृषकों के हृदय में उल्लास भर उठा, जन जन पुलकित आनंदित हो उठा, ग्रीष्म से सूख रहे पोखर तालाब वर्षा के जल को अपने भीतर समेटने को आतुर हो उठे, पुलकित हो उठे, वर्षा जल से स्नान करके वृक्षों के पत्ते पत्ते खिल उठे, चमक उठे, हर तरफ हरितिमा छा गई, पक्षी फुदक फुदक कर जल में क्रीड़ा करने लगे, हाँ फुदक फुदक कर जल में क्रीड़ा करने लगे, सुरभित सुगंधित पवन बह चला, प्रकृति के भी रूप निराले हैं। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आना सभी में कर देता है नव जीवन का संचार, एक उमंग एक तरंग, वर्षा की हर फुहार से मन मयूर कर उठता है नृत्य, हर सुखद बड़ा सुखद और सुहावना है वर्षा ऋतु का आगमन। हाँ वर्षा ऋतु का आगमन। धन्यवाद।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिषेक केसर।

वानी और अमिता मेहरोत्रा का कविता पाठ। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं प्रिया। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए कबीर दास का ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थीं प्रिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम की इस कव्वाली के साथ। आवाज़ें हैं अमीन साबरी, फरीद साबरी और साथी से, लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

लीजिए आप सुनिए फिल्म तुम बिन टू का ये गीत, आवाजें हैं जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की, गीतकार शकील आजमी, संगीतकार अंकित तिवारी।

इसी कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सबरस कार्यक्रम सुनिए। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गीत रचना।

सबरस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वारसी ब्रदर्स की आवाज़ में अमीर खुसरो का ये सूफी कलाम।

इस कव्वाली के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए

0: नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887 और 9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386 और 9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों की 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected. दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल
0: रिलेशनशिप। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा

0: क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के

0: फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड

0: आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan.

0: सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवर हॉलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानिब मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशान जद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिर खा दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का ये सानहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाकई भारतीय सफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए राबते में हैं, क्योंकि मुतासरा इलाकों में मुवासलाती राबते मुनक़त हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राबता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 47 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सफारतखाना उनके महफूज इनखला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखला के लिए मदद तलब की है। वजारत खारजा ने लोगों को तावन मुहैया करने की गरज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर राबता किया जा सकता है। +91 11 23 08 87 18 +91 11 23 08 87 19 व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के लिए इस नंबर पर राबता किया जा सकता है +91 99 68 21 9 88। इस आईडी पर ईमेल भी किया जा सकता है situationroom@meea.gov.in। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के इमरजेंसी राबता नंबर हैं +9 77 985 131 06 807, +9 77 970 910 7500 और 977 981 032 6117। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का फजाई सर्वे किया और नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट।
2: बिहार में किसी किस्म की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 4 इजाफी बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर लौट रही है। जनाब चौधरी ने बघा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी समेत सरहदी इलाकों में आज इमरजेंसी तैयारियों का जायजा भी लिया।
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान

0: हो रही है, बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है। लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य।
1: पड़ोसी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के तनाजुर में मशरकी वस्ती रेलवे ने समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में अलर्ट भी जारी किया है। पटना से सविता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
2: नेपाल में सैलाब और कुदरती आफत के तनाजुर में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने राहत और बचाव टीमों को जरूरी वसायल के साथ सरगर्म कर दिया है ताकि वो नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को बहिफाजत वहां से निकाल सकें और उन्हें फौरी ताउन फराहम कर सकें। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: उत्तर प्रदेश में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर का कंट्रोल रूम नेपाल की सरहद पर वाकई जिलों में सूरत हाल पर मुस्तकिल नजर रखे हुए है। रियासती हुकूमत ने नेपाल में राहत और बचाव कार्रवाई के लिए SDRF की एक प्लाटून तैनात कर दी है। यह प्लाटून 32 अहलकारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा PAC की 26वीं बटालियन के 22 अहलकारों को भी नेपाल भेजा गया है। हुकूमत ने जरूरत के मुताबिक इजाफी फोर्सेज और वसायल मुहैया कराने की गरज से तैयारियां कर ली हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुतासर अफराद को राहत फराहम करने में कोई कमी न रह जाए। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के सिंधों के अहलखाना मालूमात या किसी किस्म के ताउन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 पर राब्ता कर सकते हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी हफ्ते के रोज से जमहूरिया उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने कहा कि वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद के 2 रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे। जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में बाहमी ताउन का भी जायजा लेंगे और आगे की राह तय करेंगे। वजीर आजम मोदी ताशकंद से किर्गिस्तान के शहर बिश्केक जाएंगे जहां वो जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर की दावत पर इस माह की 31 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के एक जदीद निज़ाम की तश्कील के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से लेकर जदीद तरीन तरबियती मराकज़ तक मुल्क भर में एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है जहां बासलाहियत अफराद को हर मरहले पर तआवुन मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से आज खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में भारत के खेलों से मुतालिक हौसलों और नौजवानों की तवानाई को यकजा करना है।
4: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: उन्होंने कहा कि हर जिले में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो खेलों के आलमी मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ सके। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील से बासलाहियत अफराद की तलाश के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान किया था ताकि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की खेलों के ताल्लुक से निशानदेही की जा सके। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज खेल भारत में एक बेहतरीन करियर और पेशे के तौर पर उभरे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम ने मोदी की क्यादत में खेल एक कौमी तरजीह के तौर पर और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के एक अहम आले के तौर पर उभरे हैं। वजीर आजम ने मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला नशियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को

0: की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खास तौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है?
1: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
0: जी,
1: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में?
1: देखिए आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, और उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल, इसको जो अहिंसा का है, उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
0: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो संख्या 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
1: हमारा इतिहास आप देखिए कि वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी, तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
0: जी,
1: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है, अगर उनका हम उत्खनन सही करें और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए, तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
0: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थाई सूची से शुरू हुई थी, और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक, ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
1: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती

0: है, उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है,
1: जी
0: तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहाँ एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहाँ पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल हो जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
1: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
0: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान है। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख है, दुखों के बारे में उन्होंने चार उन्होंने उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन चार उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, आठ सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप आठ सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है। और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोध गया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
0: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है, तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जा रहा, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखे, और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
1: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
0: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए, जो हमारी पीढ़ियां हैं जो वर्तमान पीढ़ी है और हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें, और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा

0: सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
1: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा इतना धन कहाँ से आएगा, तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
0: व्यक्ति विशेष कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आपकी, यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
1: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं और जो इंडिविजुअल है कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं, कहीं उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया, तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बंट जाएगा।
0: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है, तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया उन्हें वापस लाया जा रहा है, तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है, तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए, तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से, एक तो हम अपनी सभ्यता को अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया, क्योंकि बहुत सारे देशों ने ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है, तो उस महत्व का अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं नई नई पीढ़ियां उनको भी समझा रहे हैं सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
0: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जा करके वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध की देशों का प्रचार करना है तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है।
0: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: Insights. This is Akashvani. In the program Insights, now we bring a discussion on 21st Global Sustainability Summit, Accelerating India's Sustainability Transition. The participants are Rahul Mahajan, Senior Journalist, and Shreya Pathak, Anchor.
4: India has long been a voice for balanced growth where development and ecology move together. But today, sustainability is no longer just about policies and reports. It is about speed of action, scale of impact, and strength of systems. This year's theme of the 21st Global Sustainability

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

चश्मे बद्दूर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं हेमंती शुक्ला और येसुदास की। गीतकार हैं इंदु जैन, संगीतकार हैं राजकमल।

लीजिए अब सुनिए फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की, गीत रचना है संतोष आनंद की और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संगीता शंकर का वायलिन वादन, राग है पूरिया। तबले पर संगत की है महावीर प्रसाद भट्ट ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता शंकर का वायलिन वादन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: National Capital Region. Onions from the government's price stabilization buffer are being sold at a subsidized rate of 35 rupees per kilogram through NCCF, NAFED and Kendriya Bhandar outlets as well as mobile vans across Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।